0: Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple, and Fun Asia.
1: Register free now at meditation.funasia.net.
2: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
4: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji. 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
0: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
6: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

या लाइफ में कुछ भी होएगा, बस जिंदगी को बोलने का, जिंदगी आ रहा हूं मैं, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटी तो आप ये गाना जरूर गाइएगा। बट उससे पहले आप कॉल कीजिए अटॉर्नी ओमर ख्वाजा को इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट या फिर स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ। वेल अटॉर्नी ओमर ख्वाजा को कॉल कीजिए, हु विल फाइट योर केस एंड गिव यू द रिप्रेजेंटेशन दैट यू नीड एंड गेट यू द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल एंड यू नीड अ competent attorney that will make your case and get you compensated, and the best part is this, जी हाँ, you don't pay until you win। जी हाँ, अगर आपके पास कोई केस हो, अगर बात करनी हो इनसे केस कंसल्टेशन के बारे में, तो इनके ऑफिस को कॉल कीजिए। अटॉर्नी ओमर ख्वाजा के ऑफिस का नंबर है 4693005046, या इनकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो और इनकी वेबसाइट है attorneyomar.com। तो पहले कॉल कीजिए, फिर जिंदगी को बोलिए, जिंदगी बस आ रहा हूँ मैं।

0: ये लोग बारिश में शोला तो भड़का जरूर रहे हैं, बट क्या शोला भड़काया था आमिर खान और रानी मुखर्जी ने ऑन दैट सॉन्ग गुलाम। दिस वन हैज राघव एंड निहारिका, एब्सोल्युटली अमेजिंग बीट। मैं आपको बताता हूँ ड्रीम होम मॉर्गेज के बारे में, उसके बाद लगाते हैं हम थोड़ी बहुत सावन में आग। बट ड्रीम होम मॉर्गेज हैज बीन हियर एंड योर ड्रीम होम कुड बी क्लोजर देन यू थिंक विथ ड्रीम होम मॉर्गेज। 1998 से ये आपकी सेवा में लगे हैं एंड दे हैव हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री विथ होम ओनरशिप dreams and they have turned those dreams into reality with personalized mortgage solutions and a smooth stress-free loan process. They are licensed in all 50 states and their experienced team is committed to finding the right loan option tailored to your needs. Whether you are buying your first home, upgrading or refinancing or investment properties, do reach out to Dream Home Mortgage. Start your home ownership journey with confidence today. You can call 972-245-5626, 972-245-5626, or you can visit their website, which is DreamHomeMortgage.com for more details. Dream Home Mortgage, making your dream homes happen. चलिए सावन में लगाते हैं थोड़ी बहुत आग।
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

ये तो अटके है, भटके है, पता नहीं कहाँ कहाँ लटके है। टेकन फ्रॉम द मूवी पागलपंती। अगर आपने देखी नहीं हो मूवी तो गॉर्जियस इलियाना डिक्रूज एंड जॉन अब्राहम दिखे थे आपको इस गाने में। मीका सिंह की आवाज़ ऑफकोर्स, नेहा कक्कड़ भी थी इस सॉन्ग की आवाज़ में। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। और अगर आपको कुछ सुनना हो, कुछ सुनाना हो तो जरूर कॉल कीजिए। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। यू ट्यून टू जीरो जरा विद आरजे सोमल।

जी हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं। इनफैक्ट आप, हमारा गोल यही रहता है फ्राइडे सैटरडे नाइट ऑन जी रजरा के नचांगे सारी रात आपको सोनिया भाई। आज रात का आपका सीन भी सेट करता हूँ मैं, बट पहले बताते चलता हूँ मैं आपको, दिस पार्ट ऑफ शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US। दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेसेस। दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। यू कैन कॉल देयर ऑफिस एट 469-942-9888,

0: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Shaadi bihaah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: बेटा, 95% आए?
5: हाँ मम्मी।
4: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
6: मेरा?
4: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: तारा वो तारा हर तारा।
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808।

अहम सफर अहम नवा हाँ पास आ जी लजरा वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन यू ट्यून टू जी लजरा विद आरजे सौमिल और पिकिंग अप द पेस बदतमीज दिल इज लाइंड अप थैंक्स टू शिवानी एंड ऑफ कोर्स मिक्सिंग इट अप टेकिंग इट अप अ फ्यू नॉचेस हियर कम्स अ क्लासिक ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट आपको धूम मचानी हो तो कॉल कीजिए 9723555555 है स्टूडियो का नंबर ऑफ कोर्स

जी हाँ, धूम मचाने का नंबर है 9723555555 है स्टूडियो का नंबर। आपको धूम मचानी हो, पार्टी करनी हो तो जरूर कॉल कीजिए और शेयर कीजिए मुझे आपका फेवरेट सॉन्ग जिस पे आप थिरकते हो। एंड लेट्स कीप दैट बीट फ्लोइंग, लेट्स कीप दैट ब्लड गोइंग, एंड लेट्स कीप दैट फीट टैपिंग। एज लॉन्ग एज द सॉन्ग हैज द बीट दैट विल मूव आवर फीट, इट्स एब्सोल्युटली अ फेयर गेम। चलो मैं बताता हूँ आपको बचपन की यादों के बारे में। You know, you found a truly iconic food brand when just hearing its name brings back a flood of memories from the yesteryears. Ji haan, I'm talking about Hoco, which has been for generations across India, and now it is here in North Texas. Whether you have been craving their legendary chana pani puri, iconic sandwiches, flavorful curries, or the famous Hoco cold cocoa that people absolutely swear by, you don't have to wait for your next trip to India anymore. Ji haan, you can visit 2693 at Preston Road, Suite 1000 in Frisco, and experience the authentic flavors that have made it one of India's most loved food brands. For full menu and adhik jankari ke liye, aap visit karte hain ki website. Inki website hai hoco.us, hocco.us. Come hungry and leave with the taste of India. Chaliye leke chalta hoon aapko badtameez dil ke bare mein, and batata hoon kuch badtameezi. दिल बदतमीज होना ही चाहिए यार। देयर इज एन एज फॉर दैट, देयर इज अ फेज ऑफ लाइफ फॉर दैट, एंड ब्रिंगिंग यू नाउ टू द वर्ल्ड ऑफ ये जवानी है दीवानी। अगर जवानी में दिल बदतमीज नहीं हुआ तो फिर क्या किया हमने, राइट?

जी हाँ, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल मानना। और शोमी और ठुमका के बाद यार रणबीर कपूर में राम देख मुझे, मैं ढूंढते रह जाऊंगा। पता नहीं रामायण का जो ट्रेलर ड्रॉप हुआ है उसमें रणबीर इज लुकिंग लाइक राम, बट इट बी हार्ड टू नॉक ऑफ दिस चॉकलेटी बॉय, बदतमीज दिल, प्यार होता होता होता कहीं बार है इमेज ऑन रामायण। चलिए लेके चलता हूँ अगले गाने की ओर, जाए योर सॉन्ग कमिंग अप। माय गुडनेस, इट वाज सो हॉट, वी गेटिंग अ ब्रेक, वी गेटिंग अ रिप्रीव फ्रॉम द हीट। एंड जी हाँ, आज ब्लू है पानी पानी।

जी हाँ, आज दिन तो बहुत सनी सनी सनी और ब्लू है, पानी पानी। पीपल आर ट्रैवलिंग एंड दे आर विजिटिंग एग्जॉटिक प्लेसेस, बीचेस एंड मोर। ठीक है, चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। और आपको पता है, आपको तो पता ही है कि सैटरडे नाइट मैं पार्टी के लिए जगह नहीं ढूंढता। मैं आपकी तो क्या, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।

जी हाँ, कोई मिल गया, मिल ही गया। वेल आई होप यू लव दैट मैशअप। आज की रात बिजुरिया सावन में लग गया। और मुझको क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ब्रेक आने वाला है और मैं यू गया और यू आया। यू ट्यून इन टू चीले जरा विद आरजे सोमिल, वेरी गेट ऑल ऑफ द क्लास एंड नन ऑफ द बकवास।

जी हाँ, हमने जीरा जरा इसीलिए रखा है शो का नाम कि यार रोजमर्रा की जिंदगी में धुएं धुके धक्के तो मिलते रहते हैं आपको और हमको, और इसी में आपकी और हमारी जिंदगी कट भी जाती है। पर काटनी किसे है जिंदगी, हमें तो जीनी है जिंदगी। इसीलिए आप सही स्टेशन पे सही टाइम पे ट्यून इन हुए हो, इसीलिए हमने शो का नाम रखा है जीरे जरा। सो क्यों ना आप और हम दिस नेक्स्ट आवर ऑफ जीरे जरा थोड़ा और रंगीन बना दे, क्यों ना आप और हम इस जिंदगी को और थोड़ा हसीन बना दे। चलिए लेके चलता हूँ अगले गाने की ओर, और मिक्सिंग इट अप अ लिटिल बिट, लेट्स ग्रूव। बैक इन द डे व्हेन आई वाज कमिंग अप ऑफ एज, देयर वाज एमटीवी, एंड एमटीवी हैड इवनिंग आवर में होता था उनका ग्रूव, एंड इट वाज, वी डोंट नो व्हाट ग्रूव वाज एट द टाइम, बट इट वाज बाय द बीच एंड इट वाज लाइव म्यूजिक एंड पीपल वर ग्रूविंग एंड वी हैड नो क्लू व्हाट दैट वाज। बट लाइक आई सेड, बाद में जब होश आया तो हमको पता चला ग्रूव क्या चीज़ होती है एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग ग्रूव इज। चलिए लेके चलता हूँ ऐसे ही ग्रूवी ट्रैक की ओर, और दिस इज द लास्ट आवर ऑफ माय शो जीरे जरा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू जीरे जरा विद आरजे सोमेलो।

Yeah, that was Raftaar and Nora Fatehi, and the song is called Baby Marwa Ke Maange. It's not in a movie yet, but what an amazing dance hall number, and I just cannot imagine. I mean, this was an incredible song. I wanted to choreograph this song, but the choreography on the song is absolutely stunning. And of course, बहुत लोगों ने नोरा फतेही को कंपेयर किया है विद द इंडियन शकीरा, एंड शी वॉज एट द फीफा ओपनिंग इवेंट इन कैनेडा. यू सॉ दैट, राइट? चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. और रिक्वेस्ट आई थी इस गाने की, शोभा. एब्सोल्युटली स्टनिंग सॉन्ग. इन फैक्ट आई वॉन्ट टू प्ले द सॉन्ग. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द सॉन्ग बैक टू आवर जहन.

जी हाँ, ये दुनिया पित्तल दी बट जी हाँ ये खुड़ी है सोने दी। ऑफ कोर्स चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। और रिक्वेस्ट आई थी मरियम की, रिक्वेस्ट पे सुनाता हूँ ये खूबसूरत सा गाना। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट हैड फॉलन ऑफ ऑफ माय रेडार। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट बैक। एंड अमीषा पटेल को देखा था आपने इस गाने में अलॉन्ग विद रानी मुखर्जी एंड सैफ ऑफ कोर्स।

लेकिन फ्रॉम धुरंधर ऑफ कोर्स गहरा हुआ रंग आशिकी का गहरा हुआ. वेल कीप इट राइट हियर ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट व्हेन आई कम बैक बिफोर आई फिनिश माय शो एट 9 o'clock. मेरे पास एक गिव अवे है चंडीगढ़ बाइट्स की ओर से और एज वी ऑलवेज डू द हिंट फॉर विनिंग द गिव अवे इज इन दिस सेगमेंट ऑलरेडी. सो मेक श्योर यू ट्यून इन राइट नाउ एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट सो यू गेट अ चांस टू विन द गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिसोर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
6: Now, sir, or price?
5: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
7: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
8: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं.
7: व्हाट?
9: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन. पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड. ऑफर वैलिड टिल August 3rd. विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स.
10: फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

वेलकम वेलकम वेलकम बैक टू जी लजरा विद आरजे सोमिल। और पहुंच गए हम आखिरी सेगमेंट ऑफ टुनाइट शो जी लजरा विद आरजे सोमिल। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस शो योर शो एंड टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपकी रिक्वेस्टों से ही बनता है ये शो और हम पिरोते हैं इस शो में एक एक मोती आपके रिक्वेस्ट और हमारे पसंदीदा गानों के साथ। चलिए, मैंने बताया था आपको ब्रेक पे जाने से पहले के व्हेन आई कम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेट्स टेक इट अप अ फ्यू नॉचेस एंड गेट यू रेडी फॉर द पार्टी दैट यू हैविंग आउट टू। सो व्हेन योर फीट हिट द डांस फ्लोर, you're absolutely rocking the party, and like they say, when the party is rocking, don't bother knocking.

जी हाँ, मनो लुट ले गया. मैंने बताया था आपको, दिस इज द सेगमेंट यू गेट अ चांस टू विन अ गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स, एंड हियर इज दैट opportunity for you. If you already know, I gave you a hint of winning this giveaway in the last segment. So मैंने पिछले segment में अमीषा पटेल का एक गाना बजाया था. अमीषा पटेल का एक गाना बजाया था. वो कौन सा गाना था और किस मूवी से था वो गाना? अगर आप जीत सकते हो तो here's your chance to win $10 on the billing of $50 dine-in with Chandigarh Bites. Plus you also enjoy the special thali from Monday through Friday with exciting new dishes rotating daily for lunch only. जी हाँ, located off of McDermott Drive in Allen. Do visit their website, which is chandigarhbites.com, for details. And just make sure that you are able to avail this giveaway and you haven't won this giveaway in the last 30 days. If you haven't, Amisha Patel ka maine kaun sa gana bajata hai, and the person who requested that song cannot win that. Thoda insider ho jayega wo information. So person who requested cannot win that giveaway. But if you are... मैंने अमीषा पटेल का एक गाना बजाया था पिछले सेगमेंट में. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. ये ट्यून इनटू जीरे जरा विद आरजे सौमिल और पहुंच गए. इनफैक्ट गाना तो बोल रहा था कि आ जा, बट जाने का वक्त हो रहा है मेरा. और फिर भी जाते जाते और थोड़ा थिरकते हैं हम आपके साथ, क्योंकि आज फिर पीने की तमन्ना, जीने नहीं, जीने की भी तमन्ना है और पीने की भी तमन्ना है.

जी हाँ, आज फिर इनको तो पीने की तमन्ना है. कंग्रेचुलेशन सोनल ऑन विनिंग. यस, द सॉन्ग आई प्लेड विद अमीशा पटेल इन द लास्ट सेगमेंट वॉज लेजी लम्हे, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक. कंग्रेचुलेशन वंस अगेन ऑन विनिंग द गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. चलो, आपको अभी इनको पीना था और हमको बीड़ी जलानी है. अभी चलिए बीड़ी की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको. Man, every time this song is played, whether it be a festival, a street festival, a college festival or a wedding event, every one of us gets on the dance floor. Bas gaane ka beat hi kuch aisa hai, gaana mahol bana deta hai aisa ki kya batau aapko. Beautiful song, Beedi Jalai Le, taken from Omkara.

माय गुडनेस, व्हाट इनोसेंस, व्हाट अमेजिंग एनर्जी दिस सॉन्ग हैज। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार वो बचपन ही क्या जिसमें हरकत ना हो, और वो जवानी है कि ही क्या जिसमें थोड़ी बहुत शरारत ना हो। एंड दिस सॉन्ग इज फुल ऑफ गुड क्लीन शरारत। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और चलने का वक्त है मेरा, और आज रात का सीन आपका सेट किए चलता हूँ मैं।

जी हाँ, उम्मीद तो हमारी यही रहती है कि आपका भी आज रात का सीन बना दिया होगा हमने। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। मेहरबान कदरदान, दिल थाम के बैठी आ रही है सनी लियोन, दिस टाइम दो पैग मार और भूल जा।

दरवाजा तू झूठी मैं मकार, प्यार होता कई बार है। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की और आखिरी दो गाने सुनाते चलता हूँ मैं आपको। एंड जस्ट बिकॉज इट्स अ डांस बीट डजंट मीन इट हैज़ टू बी द न्यूएस्ट सॉन्ग। इन फैक्ट आई एम टेकिंग इट द ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट एंड दिस इज एन एवरग्रीन सॉन्ग एंड देन आई विल फिनिश अप विद वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स टुनाइट, तेरे सिवा जग में। बट इन द मीन टाइम ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में।

जी हाँ, आंखें मिले तो लगे आग पानी में। माय गुडनेस, आर डी बर्मन, आशा भोसले, फिल्म महान, रेस्ट इन पीस परवीन बाबी। चलिए लेके चलता हूँ आपको आखिरी गाने की और जिंदगी रही तो फिर से मिलेंगे अगले शो पे ऑन जीले जरा। थैंक यू फॉर बीइंग माय हम सफर ऑन जीले जरा विद आरजे सोमल।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Reno, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
4: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
5: Register free now at meditation.funasia.net.
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं।
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं।
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं।
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज हैं यार।
7: तो चल, उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
8: What?
9: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
10: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में? सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना, बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
3: Don't miss out on the dance party of the year. Join the club, Fun Asia Revolution, and let the good times roll.

चलते प्यार सोनिए ताई चलते प्यार ऐसा नहीं चलते प्यार।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: Don't miss out on the dance party of the year. Join the Club Fun Asia Revolution and let the good times roll.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
3: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार
4: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं
3: व्हाट
5: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड ऑफर वैलिड टिल August 3rd विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स
6: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
7: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
6: सच में सब संभालेंगे
7: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 वैनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन partner.

0: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया, फन
1: एशिया। Don't miss out on the dance party of the year. Join the club, Fun Asia Revolution, and let the good times roll.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
3: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
2: What?
4: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
6: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
7: Your airwaves.
8: Turn it up.
7: Brought to you by Club Fun Asia.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
4: बेटा 95% आए?
5: हाँ मम्मी।
4: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
6: मेरा?
4: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: हाय, दिस इज रणवीर शौरी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।

0: revolution and let the good times roll.
1: हाय नी तेरा सूट भी, हाय नी तेरी साड़ी भी, हाय नी तेरा लहंगा, तेरी ड्रेस ते तेरा कोका डिजाइनर.

0: कभी सोचा है हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
1: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: बेटा 95% आए?
6: हाँ मम्मी।
5: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
7: मेरा?
5: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
7: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

run a race like me. जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग 104.

0: उचाल है।
1: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
2: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
3: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है, आदत से नहीं।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
4: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
5: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.
2: Yo, got an Angela, Abby, y'all already know, baby.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
4: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: Bringing South Asia closer, more closer. Funasia 104.9 FM.
1: अब तू आ गई है।

0: अच्छा
1: के दिल कर चूचे चूचे चे के दिल कर चूचे चूचे चे।
2: कितने आदमी थे?
3: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it.

कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना ए ए I'm one in a million पर ज्यादा भी उछलेना ना किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना।

काम चाहे कुछ भी ना करे बेटे उसमें भी स्वैग है। अरे घूट में स्वैग है, अरे घूट में स्वैग है।

0: अरे घूट में स्वैग है अरे घूट में स्वैग है अरे घूट में स्वैग है अरे घूट में स्वैग है।
1: अभी भी एक घूट बाकी है।

0: baby.
1: Variety is the spice of our station. 104.9 FM.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

Good morning. A very, very good morning to all the listeners of Sunday Gupshup on 104.9 FM, Fun Asia Radio. Sunday Gupshup ke tamam shrotaon ka hardik swagat. A warm welcome to all the listeners of Sunday Gupshup on 104.9 FM, Fun Asia Radio. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एक रूप, आप सबका स्वागत करती हूं। संडे सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये शो आता है जिसका नाम संडे गपशप, और इसको पेश करती हूं मैं यानी कि आरजे एक रूप। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो, जस्ट कीप द कॉल्स कमिंग इन। संडे के संडे मेरी आपसे मुलाकात होती है, 3 घंटे का ये शो होता है जो कि बहुत ही जल्दी टाइम यहाँ पर निकल जाता है बिकॉज आप सबका प्यार, आपका टाइम, आपकी पार्टिसिपेशन एंड आपके इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट। सो 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो। शो का आगाज़ करते हैं।

एक बार फिर से आप सबका स्वागत करना चाहूंगी संडे गपशप. आप शो सुन रहे हैं, मेरा नाम है आरजे एकरूप एंड आप सब जो है अभी संडे 7 बजे से 10 बजे तक मैं यहाँ पर होती हूँ. सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कॉल एंड लेट मी नो व्हाट सॉन्ग यू वुड लाइक टू लिसन टू. मुस्कान वो चाबी है जो हर दिल को खोल देती है. जी हाँ, मुस्कुराते रहिए, बस यूं ही जो है जिंदगी का सफर बहुत सुहाना हो जाता है. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. ये वाला जो सॉन्ग है इसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, तो वी विल स्टार्ट द शो विद द फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ आर शो ऑन आर शो. थोड़ा सा और रिवाइंड करूंगी.

मूवी का नाम सावन की घटा, नाम भी इतना सिंपल और स्टोरी भी इतनी सिंपल, इतनी अच्छी म्यूजिकल स्टोरी है, म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बनी 1966 में आई थी ये फिल्म जिसका नाम सावन की घटा। इसमें शर्मिला जी एंड द पैट्रियोटिक भरत कुमार यानी कि मनोज कुमार साहब इस फिल्म में। फिल्म का म्यूजिक आप पहचान गए होंगे डेफिनेटली, द वे इट साउंड्स, द वे द इंस्ट्रूमेंट्स आर बीइंग यूज्ड। और ये फिल्म का म्यूजिक है ओपी नैयर साहब का, शक्ति सामंता की फिल्म, जिनके साथ, शक्ति सामंता के साथ तो शर्मिला जी ने कई फिल्मों के लिए काम किया था। आशा भोंसले, आशा जी की आवाज़, ये वाली जरा हौले हौले चलो। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। आज की डेट है अगस्त 2, फर्स्ट संडे है इस महीने का, अगस्त के महीने का। एंड जो है गर्मी आज, एक्चुअली इनफैक्ट सुबह जब मैं आ रही थी तो मौसम अच्छा था। मैं आज आउटडोर गई थी बैकयार्ड में एंड मौसम वॉज नॉट बैड। वेदर टेम्परेचर थोड़ा लग रहा है कि शायद चेंज आने वाला है क्योंकि अब अगस्त आ गई। आई गेस इन जस्ट अ वीक और सो वी शुड बी कमिंग बैक टू द अर्ली 90s और मे बी लेट 80s, होपफुली वेरी सून। उसके बाद तो देन ऑफ कोर्स स्कूल भी कल से शुरू हो रहे हैं एंड देन जो है मौसम भी बदल जाएगा वेरी सून, और फिर फॉल का सीजन, विंटर का सीजन, एंड देन अगेन विल बी होपिंग फॉर सम हीट एंड सन। बट दिस इज़ हाउ इट गोस। चार आते हैं सीजन्स, चार मौसम आते हैं, और बस इन्हीं चार मौसम के साथ साथ साल भी पूरा फटाफट निकल जाता है। वी आर ऑलरेडी इन द 8th month, 12th month आने में भी टाइम नहीं लगेगा। बट एनी वे, दिस इज़ हाउ इट गोज, टाइम फ्लाइज। तो फिर टाइम जो है 7 से 10 ही है मेरे पास यहाँ पर, एवरी संडे आती हूँ यहाँ पर, तो आप ज़रूर कॉल करके मुझे बता दीजिए कौन सा सॉन्ग आप सुनेंगे। अगली रिक्वेस्ट जो आई हुई है वो है अगेन आशा जी की ही आवाज़ में, फिल्म का नाम पड़ोसन।

वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द इंडस्ट्री सायरा बानू जी, जिन्होंने इस फिल्म में काम किया। इनकी जो डेब्यू फिल्म थी जंगली, जिसके बारे में तो बहुत चर्चा रही, इनकी फर्स्ट फिल्म से ही ये बहुत पॉपुलर हो गई थी एंड उसके बाद इन्होंने और इतनी सारी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया। पड़ोसन वॉज जस्ट वन ऑफ द मैनी फिल्म दैट शी वर्कड इन। ऑल दो इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था, शी वॉज एट द पीक ऑफ हर यूथ एज वेल एज हर करियर, लेकिन जब इनकी शादी हुई दिलीप कुमार साहब के साथ, सो जो इनके जो कमिटमेंट्स थी, उन्होंने जो पेंडिंग थे वो उन्होंने फुलफिल किए, लेकिन उसके बाद कोई न्यू वेंचर जो है नहीं साइन किया। सो सायरा बानू जी वंडरफुल एक्ट्रेस एंड इनफैक्ट इनका बर्थडे इसी मंथ में आता है, सो आई एम श्योर एट सम पॉइंट वी विल बी टॉकिंग अबाउट हर एंड लिसनिंग टू मोर सॉन्ग्स ऑफ हर फ्रॉम हर फिल्म्स। ब्रेक पर जाने से पहले एक ये बड़ा प्यारा सा सॉन्ग।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma,

When you rise in the morning, think of such a privilege it is to be alive, to be breathing, to be thinking, and to be listening and tuning in to the Fun Asia Radio. Every morning brings a new beginning. Every sunrise is a gentle reminder that anything is possible. Therefore, wake up with hope in your heart and light in your soul. A very good morning once again. This is RJ Ekrup. 7 बजे से 10 बजे तक यहाँ पर शो पेश कर रही हूँ आपके लिए. संडे गपशप 9722355555 है हमारे इस स्टूडियो का फोन नंबर. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर फोन कॉल्स. धीरे धीरे आई नो आप सब जाग रहे हैं, उठ रहे हैं. संडे मॉर्निंग है और जैसे जैसे आप जागते हैं वैसे वैसे आप मुझे यहाँ पर फ़ोन कॉल्स करते हैं. थैंक यू सो मच दैट आई एम ऑन योर माइंड ऑन अ संडे मॉर्निंग. यहाँ पर 3 घंटे का ये शो होता है, टाइम का पता ही नहीं चलता. इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आप करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं मेरे साथ फ़ोन पर कि डेफिनेटली मेरा तो दिन बन जाता है और आगे आने वाला हफ्ता भी बहुत खूबसूरत हो जाता है. हमारी लिसनर जिन्होंने ये रिक्वेस्ट तो ब्रेक पर जाने से पहले ही कर दी थी, लेकिन उनके कुछ काम थे जो वो पेंडिंग करना चाह रही थी. एंड देयर फोर शी सेड कि जब ब्रेक के बाद आएंगे तो उनके ये वाला जो रिक्वेस्टेड सॉन्ग है प्ले करूंगी मैं. सो हियर यू गो, ये आपके लिए. फिल्म का नाम गोलमाल.

16 साल फिल्म का नाम और हेमंत कुमार साहब की आवाज़, ये जो गीत उन्होंने देवानंद साहब के लिए गाया है, अपना दिल तो आवारा। 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो। मैं आपके साथ यहाँ पर रहूँगी 10 o'clock, एंड आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप इस शो को इतना प्यार करते हैं कि बस कई बार क्या होता है, मैं फ़ोन पे होती हूँ, गाना गीत ख़त्म हो जाता है, एंड देन समटाइम्स आई जस्ट हैव टू रिवाइंड इट फॉर अ फ्यू मोर सेकेंड्स ताकि वो गाना चलता रहे, कोई ब्रेक ना आए व्हाइल आई रैप अप स्पीकिंग टू आवर कॉलर्स ऑन द फोन। अगस्त का महीना है, यानी कि अगस्त 15th, विच इज़ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, आता है अगस्त 15th को। देयर फोर दिस ईयर सेलिब्रेट इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे एट IANT's आनंद बाजार ऑन सैटरडे अगस्त 15th फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स। इस बार जो वेन्यू है वो है कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को। It is completely indoors and definitely free for everyone. You can enjoy authentic Indian food, a grand parade, cultural performances, live music, shopping, and an incredible drone show and fireworks finale. You should bring your family, friends, and be a part of North Texas's biggest Indian Independence Day celebration, which is going to take place on Saturday, August 15th from 2 p.m. onwards. और ये जो इवेंट है इसका नाम है आनंद बाजार। हमारी लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की फरमाइश की है, तो चलिए आई एम गोना प्ले इट राइट नाउ।

फिल्म का नाम जुर्माना, और इसमें राखी जी गीत गा रही हैं, फरीदा जलाल जी भी दिखाई दे रही हैं, और श्रीराम लागू द वंडरफुल एक्टर जिन्होंने इस फिल्म में भी उन्होंने काम किया था. हमारी सेम लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट की थी, एंड कोइंसिडेंटली वो भी सेम एक्ट्रेस पर ही फिल्माया गया है, राखी जी पर एंड अमिताभ बच्चन. फिल्म का नाम तो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन गाने के बोल हैं अपने प्यार के सपने सच हुए, और ये है बरसात की, आई थिंक बरसात की एक रात, आई डोंट थिंक सो, बट आई गेस आई विल फाइंड आउट व्हाइल यू लिसन टू दिस सॉन्ग.

0: फिल्म का नाम है बरसात की एक रात. मैं कंफ्यूज हो रही थी बरसात की रात के साथ, बिकॉज मैंने कहा वो तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी और ये वाली वो कैसे हो सकती है. सो देयर इज एन एडेड वर्ड टू इट, एक लगा हुआ है इसमें, बरसात की एक रात. ये भी फिल्म जो है शक्ति सामंता ने ही इसको डायरेक्ट किया था. इसमें राखी जी थी एंड उनके साथ वेरी टॉल एक्टर अमिताभ बच्चन. जी हाँ, एंड अमजद खान इज़ ऑल्सो सीन इन द सॉन्ग. सो आई एम श्योर उनका कोई आई गेस एंटेगनिस्ट वाला रोल होगा. दिस फिल्म केम आउट इन 1981. टाइम हो रहा है एक ब्रेक का, 8 o'clock की ब्रेक आने वाली है. 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. तो आप बस कॉल्स करें मुझे, बता दीजिए कि आप कौन सा सॉन्ग सुनेंगे. देखते ही देखते शो का 1 घंटा हो गया है, 2 घंटे और बचेंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे. दिस इज़ आरजे एकरूप ब्रिंगिंग टू यू संडे गपशप ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो. आई एम गोइंग ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, आई विल बी राइट बैक.
1: द दिल ऑफ डैलस, हार्ट टू हार्ट, फन एशिया.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Restaurant choose karna ho? Google Reviews. Hotel book karna ho? Google Reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
10: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
11: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
10: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
12: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
14: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vive, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
15: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
16: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
17: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
16: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
17: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
16: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
17: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
16: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
18: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
13: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं।
18: What?
9: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
19: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
20: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
21: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
20: Register free now at meditation.funasia.net.

स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब जुड़े हुए हैं इस शो के साथ और मेरे साथ, हमारे साथ, यानी कि 104.9 FM फनीशा रेडियो के साथ। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके साथ, आपकी कार्स में, आपके घर में, आपका पूरा पूरा साथ निभाएं। एंड आपसे भी फिर कोशिश, आशा हमारी यही होती है, उम्मीद ही होती है कि आप भी हमारा पूरा पूरा साथ निभाएंगे। एंड मुझे इस बात का कोई भी डाउट नहीं है, बिकॉज मेरे इस शो पर आप लोग सब फ़ोन कॉल्स करते हैं, बता देते हैं मुझे कि आप जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। खुशी हम सबको बहुत सारी चीज़ों से मिलती है, लेकिन एक बहुत स्पेशल चीज़ है जिससे एटलीस्ट वुमेन को तो बहुत खुशी मिलती है, और वो होते हैं डायमंड्स, स्पेशली इफ़ दे आर बॉट फ्रॉम तनिष्क। डायमंड्स aren't just forever, they are even more irresistible during the Tanishq Festival of Diamonds. Enjoy up to 25% off on diamond value and making charges, plus 0% deduction on the exchange of old gold above 18 carats. Celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Terms and conditions do apply, so when you go in there, do check them out and make sure that you understand their policies and rules. Visit Tanishq, which is located in Frisco. So this is Tanishq Jewelers, located in Frisco. बहुत ही अच्छी location है, 121 and Preston पर located हैं। बहुत शानदार उनका जो है store है, showroom है। आप अंदर जाएंगे, आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतना मन खुश हो जाता है अंदर जाकर, और स्पेशली जब अगर ऐसी डील्स हों जहां पर अप टू 25% ऑफ डायमंड पर आपको, डायमंड वैल्यू पर आपको ऑफ मिल जाए, तो फिर ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अच्छा, अब जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, दो सॉन्ग्स हैं बैक टू बैक हमारे एक लिसनर जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की है, सो आई एम गोइंग टू प्ले दो सॉन्ग्स। एक ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग है और एक वल है तो पुरानी मूवी का ही, 1968 का, लेकिन शायद वल फिल्म का नाम है नूर जहां, सो आई डोंट नो इफ इट्स कलर और ब्लैक एंड वाइट, बट डेफिनेटली ये वाला एक और सॉन्ग है, फिल्म का नाम है जब से तुम्हें देखा। सो दो सॉन्ग्स हैं, जब से तुम्हें देखा एंड दूसरी फिल्म है नूर जहां। आई एम गोना प्ले दीज सॉन्ग्स एंड हियर यू गो।

जब से तुम्हें देखा 1963 की ये फिल्म जिसका हम ये सॉन्ग सुन रहे थे, इट इज़ अबाउट ऑलमोस्ट 11 मिनट्स लॉन्ग, दैट्स द लेंथ ऑफ द सॉन्ग. तो ये मैं पूरा तो नहीं प्ले करूँगी. मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, मन्ना डे एंड ये सारे ही जो इतने कमाल के सिंगर्स थे, द होल कोहोर्ट, ये सब उन्होंने ही मिलकर ये सॉन्ग गाया है. और दत्ताराम जी का म्यूज़िक, हमारे सेम लिसनर जिन्होंने एक और बहुत अच्छे सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, ये खाली 3 मिनट्स एंड अ फ्यू सेकेंड्स, सो आई एम गोना प्ले ऑल ऑफ इट. फिल्म नूरजहां.

ये भी ये 1968 की फिल्म नूरजहां, जिसका म्यूजिक, जिसकी लुक, जिसकी जिसका फील बिल्कुल ही इतना हिस्टोरिकल, और सॉन्ग्स भी इतनी जो है प्योर उर्दू, और लैंग्वेज भी एकदम प्योर लैंग्वेज यूज़ की हुई, बिकॉज़ हिस्टोरिकल फिल्म है. इसको एक अलग, एक सर्टन तरीके से जो है इसको पोर्ट्रे किया. 1968 में एक और फिल्म आई थी जिसका सॉन्ग है, एंड दिस इज़ वेरी कमर्शियल, बहुत अच्छा सॉन्ग है. फिल्म का नाम है आँखें. इसमें माला सिन्हा एंड धर्मेंद्र जी. सो हियर यू गो, हमारे लिसनर जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की.

जिन्होंने बहुत ही फेमस सीरियल बनाया था रामायण, उन्होंने ही इस फिल्म को 1968 में बनाया था, स्पाई थ्रिलर फिल्म. द वेरी फेमस डायरेक्टर रामानंद सागर साहब, जिन्होंने धर्मेंद्र जी के साथ और माला सिन्हा जी के साथ ये फिल्म बनाई थी. एंड दिस फिल्म टर्न्ड आउट टू बी सच अ प्रॉफिटेबल वेंचर इन द ईयर. म्यूज़िक बहुत अच्छा था और इस मूवी की शूटिंग जो की थी जिस लोकेशंस में वो बड़े सुंदर थे, टोक्यो में की थी एंड बायरूट. सो ये जो है दो डिफरेंट सिटीज़ में इन्होंने इस फिल्म को शूट किया था. एंड ये एक इंटेलिजेंस रिलेटेड एक स्पाई थ्रिलर फिल्म रही. थैंक यू हमारे लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की. अब हम बढ़ते हैं अगले सॉन्ग की रिक्वेस्ट की तरफ. एंड बोथ दी सॉन्ग्स आर फ्रॉम the same movie, so there are two songs back to back that I'll be playing. Well, I guess अभी break आने वाली है तो एक अभी चलाती हूँ और एक break के बाद दोनों जो songs हैं फिल्म चोरी चोरी. एंड जिन्होंने इसकी request की है, she was reminiscing her childhood, well her youth days. She said कि हम लोग जब जाते थे college की तरफ तो हम ये जो है ना आई थिंक उस टाइम पे चार आना इज़ व्हाट शी वाज सेइंग कि हम चार आना देते थे. एंड वो जो स्टोर कीपर है वो ये सॉन्ग प्ले करते थे एंड हम लोग वहाँ खड़े होके इतना एंजॉय करते थे. सो गुड ओल्ड डेज. बॉम्बे में वो बॉर्न एंड ग्रो अप हुई हमारी जस्ट लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है. फिल्म का नाम चोरी चोरी. ये लीजिए आपके लिए.

0: सुपरहिट फिल्म, सुपरहिट जोड़ी राज कपूर साहब एंड नरगिस जी की ये फिल्म चोरी चोरी, ये फिल्म इतनी सुपरहिट हुई थी 1956 की। ये म्यूजिकल मूवी एंड बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग, जो ब्रेक के बाद मैं सॉन्ग लगाऊंगी वो भी इसी फिल्म का होगा। एंड हमारी सेम लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एक और इसी फिल्म के दूसरे सॉन्ग को भी रिक्वेस्ट किया। आई विल प्ले दैट आफ्टर वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक। 9722355555 is the number to the studio. This is RJ Ekroop.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
3: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
3: Samasya ka pakka samadhan.
4: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
5: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
6: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
5: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
6: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
7: द ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
9: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
12: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
13: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
12: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

Welcome back. 972-235-5555 is the number to the studio. और मैं हूँ आपकी होस्ट RJ एकरूप. स्वागत करती हूँ. शो का डेढ़ घंटा हो चुका है और डेढ़ घंटा पड़ा हुआ है. 10 o'clock तक ये शो आता है. संडे गपशप एवरी संडे मॉर्निंग 7 to 10. वैसे तो इंडिया एंड अराउंड जो है फ्रेंडशिप डे फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन देर आर अदर कंट्रीज दैट सेलिब्रेट friendship day around the end of

सबसे अगर बात करें ना प्रेशियस चीज़ क्या है दुनिया में, तो सबसे प्रेशियस चीज़ होता है टाइम। अगर टाइम को अच्छी जगह पे लगाएंगे हम तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। अगर हम उसको ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, ज़ाया कर देंगे, तो फिर ऑफ कोर्स टाइम भी जाएगा, एफर्ट भी जाएगी, और फिर जो है ना लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन। अगर बीत जाता है जो पल, फिर वो वापस नहीं आता। लेकिन ये भी बात है कि आजकल जिस हम मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन एक बहुत फेमस क्वोट है जो, एंड इट गोज़ लाइक दिस, यू विल नेवर फाइंड टाइम फॉर एनीथिंग, इफ़ यू वांट टाइम यू मस्ट मेक इट। हमारे पास बहुत काम होता है, हम हमेशा बिजी होते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, और यही कहते हैं कि बहुत काम है, बहुत बिजी हैं, लेकिन अगर कुछ करना है तो हमें उसके लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। और जिस तरह से आप टाइम इस शो को सुनने के लिए निकालते हैं, तो डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू। आई फील सो हम्बल्ड, आई फील सो ऑनर्ड कि आप संडे को सुबह सुबह मेरे साथ जागते हैं, यहाँ पर आते हैं स्टूडियो में। वेल यस, यू आर ट्यून्ड इन टू द रेडियो शो, और जब आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं इतने प्यार भरे, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स आप मुझे बोलते हैं, तो फिर बहुत खुशी होती है। लगता है कि इट एवरी मिनट ऑफ मी बींग हेयर इज़ वर्थ इट, और ऊपर से इतने सुंदर अच्छे अच्छे सॉन्ग्स। फ्रेंडशिप डे के लिए जैसे ही मैंने अनाउंस किया कि आज फ्रेंडशिप डे है, 1 अगस्त, फर्स्ट संडे जो होता है अगस्त का, उस दिन मनाया जाता है, तो हमारे एक कॉलर हैं जिन्होंने मुझे विश किया, एंड देर इज़ अ सॉन्ग दैट ही वॉन्ट्स टू डेडिकेट, एंड थैंक यू आपकी फ्रेंडशिप के लिए। आई गेस मैं यही कहूँगी कि पर वो जो सॉन्ग है वो मैं, ये कुछ रिक्वेस्ट आई हुई हैं उनसे, उनके बाद प्ले करती हूँ। ये वाला सॉन्ग है जो बड़ी देर से इसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, एंड आई नो कि हमारी लिसनर वेट कर रही हैं। देयर यू गो, शागिर्द फिल्म का सॉन्ग है ये। एक्चुअली नहीं, हमारे लिसनर हैं जो आउट एंड अबाउट हैं अपने डॉग राउडी के साथ, उन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। उनके डॉग का नाम है राउडी, सो दैट वॉज प्रेटी इंटरेस्टिंग। हियर यू गो, एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग।

अपने फैशन के लिए पॉपुलर दिस ब्यूटीफुल एक्ट्रेस साधना, जिन्होंने यंग एज में अपना करियर शुरू किया था. द करियर वाजंट सो लॉन्ग लास्टिंग, मतलब डेकेड्स एंड डेकेड्स के लिए तो नहीं चला, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली शी गॉट सिक एंड देन शी मूव्ड अवे फ्रॉम द लाइमलाइट. जितना काम इन्होंने किया इंडस्ट्री में इन द लेट 50s एंड 60s की, तो खैर ये क्वीन रही. पूरा 60s का जो डेकेड था वो इनके नाम पर ही था, ऐसे लगता है. अगर आप इनका फिल्मी करियर देखें तो 60s में इन्होंने बहुत कमाल की फिल्मों में काम किया, एंड देन अर्ली 70s, एंड दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन. हाउएवर द डेकेड ऑफ द 60s वाज हर गोल्डन ईयर्स, एंड उसमें इन्होंने बहुत सारा बहुत खूबसूरत काम किया. एंड देन लाइक आई सेड, शी मूव्ड अवे फ्रॉम द लाइमलाइट. इनको जो है नॉमिनेशन मिली थी दो बार, वो कौन थी के लिए और वक्त के लिए. शी वॉज जस्ट नॉमिनेटेड, शी नेवर वन एनी सच अवार्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कैटेगोरी, लेकिन इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ज़रूर मिला था 2002 में. सो ये सॉन्ग हमारे लिसनर जो कहते हैं उनको बेहद पसंद है, एंड दैट इज़ वाई ऑफकोर्स उनकी रिक्वेस्ट में आया था तो मैंने प्ले किया. अगस्त का जो महीना है जो चल रहा है, आज ऑफकोर्स फ्रेंडशिप डे है. द फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त इज़ सेलिब्रेटेड एज फ्रेंडशिप डे. बाकी अगर फूड की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नेशनल कैटफिश मंथ. यूनाइटेड स्टेट्स में मनाया जाता है कैटफिश मंथ अगस्त को. एंड देन डिपिंग डॉट्स, आई एम श्योर आपने वो खाए होंगे, जो छोटे छोटे जो आइसक्रीम होती है एंड डॉट्स होते हैं, पेबल्स होते हैं छोटे छोटे, वो बड़ा पॉपुलर एक डिज़र्ट है. व्हेन यू गो टू द मॉल्स तो वहाँ पर कियोस्क बने होते हैं. सो दैट इज़ नेशनल डिपिंग डॉट्स मंथ. फैमिली मील्स मंथ, मीनिंग नॉट द फैमिली दैट यू आर बॉर्न इन, बट द फैमिली दैट यू मेक व्हेन यू वर्क एट अ रेस्टोरेंट. सो स्पेशली जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो एक्चुअली या जो उनके बिजनेस ओनर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं, दे टेक आउट फॉर लंच और फॉर सम मील, दे टेक ऑल ऑफ देयर स्टाफ आउट फॉर अ मील एंड दे कंसिडर इट एज अ फैमिली मील, बिकॉज दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज़ एज फैमिली एंड नॉट जस्ट एम्प्लॉयज़. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस महीने में मनाई जाती हैं. पेनीनी, डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट काइंड ऑफ अ सैंडविच, वो भी इस महीने में मनाया जाता है, नेशनल पेनीनी मंथ इन अगस्त. सो सम ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू फूड दैट मेक अप टू द नेशनल सो एंड सो डे, नेशनल सो एंड सो मंथ. सो फॉर एग्जाम्पल फॉर अगस्त इट्स बिन कैटफिश मंथ, डिपिंग डॉट्स, पेनीनी मंथ, एंड ऑल्सो गोट चीज़. अगर आप गोट चीज़ के फैन हैं, अगर आपको गोट चीज़ पसंद है, तो दिस इज़ द मंथ फॉर दैट इज़ वेल. फ्रेंडशिप डे, हमारे एक लिसनर जिन्होंने हमारी फ्रेंडशिप मेरे लिए ये वाला सॉन्ग डेडिकेट किया, थैंक यू सो मच टू यू एंड टू योर वाइफ अलादन जी. ये आपके लिए, आई मीन आपकी तरफ से मेरे लिए.

0: party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
6: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

United Nations globally announced as July 30th as Friendship Day. However, in the United States and in India, it is celebrated on the first Sunday of August, which is today. So happy Friendship Day to everybody that is tuned in. Welcome. Thank you so much for staying tuned in to 104.9 FM Fanesia Radio. मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे एकरूप. आपका स्वागत करती हूँ. 9:05 हो गए हैं, यानी कि 9:05 हुए हैं स्टूडियो की क्लॉक में. 10 बजे तक के शो आता है. एंड अभी बस एक आपको सॉन्ग सुनवाऊंगी एंड देन उसके बाद गिव अवे लाइक हाउ आई यूजुअली डू. गिव अवे है आज मेरे पास चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से, बट उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या है. बट फर्स्ट, बिकॉज टुडे इज़ फ्रेंडशिप डे, हमारी लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, विच इज़ फ्रॉम द फिल्म दुनिया दिल वालों की.

जादू वाकई फ्रेंडशिप का इतना ज़्यादा होता है कि जब फ्रेंड्स मिलते हैं, बनते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो डेफिनेटली द मोमेंट्स कन्वर्ट इनटू मेमोरीज. और ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, आई रिमेम्बर वॉचिंग दिस फिल्म इन अ मूवी थिएटर इन मेरठ. हम लोग मेरठ में थे जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, एंड मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ये फिल्म देखने गई थी. एंड मुझे फिल्म की स्टोरी इतनी कोई खास याद नहीं है, बट आई डू रिमेम्बर दिस सॉन्ग डेफिनेटली वेरी क्लियरली. इसमें तब्बू हैं और दीज टू न्यू एक्टर्स जिनकी आई थिंक एक की तो डेब्यू ही थी इस फिल्म के साथ. तो स्टोरी तो मुझे इतनी याद नहीं, लेकिन ये जो मोमेंट है जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बनाया बाय गोइंग इनटू दिस मूवी हॉल. हम आर्मी कैंटोनमेंट में से सिविल एरिया में गए थे और आई रिमेम्बर क्या क्राउड था वहाँ पर और इतनी भीड़. इतने सारे हम लोग गए एंड द वे वी ऑल वेंट, और जहाँ वहाँ जाकर हमने जो टाइम स्पेंड किया, द मोमेंट्स वी enjoyed the food that we ate, वो मुझे सब याद है. So the moments that I spent with the friends became definitely have become into some wonderful memories. This is the magic of friendship and what an appropriate song to be played today. इस फिल्म का नाम वैसे तो हिंदी में इन्होंने दुनिया दिलवालों की रखा था, लेकिन इसका जो रियल जो तमिल लैंग्वेज में जो नाम है वो है कदल देसम. सो इसमें तब्बू का डेब्यू था इस फिल्म के साथ एज इन तमिल फिल्म में. एंड दिस फिल्म वॉज डेफिनेटली नोन फॉर इट्स म्यूज़िक, ए आर रहमान का म्यूज़िक, और ये सॉन्ग इतना अच्छा जो कि फ्रेंडशिप डे फ्रेंड्स को सेलिब्रेट करता हुआ, फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करता हुआ. सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीबडी. अब जो है मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी एंड फिर जो है मैं गिव अवे दूंगी. गिव अवे इज़ फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. दिस इज़ $10 ऑफ ऑन अ बिल ऑफ $50 व्हेन यू डाइन इन एट चंडीगढ़ बाइट्स, विच इज़ लोकेटेड ऑन मैकडरमट हियर इन एलन. एंड दिस इज़ फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. उनका जो वेबसाइट है उनकी वो है chandigarhbites.com. दिस सर्टन गिव अवे इज़ वैलिड फॉर स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे थ्रू फ्राइडे, और लंच के लिए ही है ये वाला गिव अवे. लाइक आई सेड, दे आर लोकेटेड इन एलन, chandigarhbites.com. So the question now is, it's a pretty simple question, unlike last time. तो मैं आपसे question ये पूछने वाली हूँ कि आपको मुझे उस movie का नाम बताना है जिसमें आमिर खान and संजय दत्त ने इकट्ठे काम किया है. They've only come in one film. You have to tell me the name of that film. 972-235-5555 is the number to the studio. Let me know in which film Sanjay Dutt and Aamir Khan have come together.

0: गुड मॉर्निंग फनीशा।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। आपने मेरठ का नाम लिया तो मेरे को मतलब
0: अच्छा
1: ऐसा
0: आप मेरठ
1: लगा
0: के
1: कि वरना
0: हो।
1: आपको दो ही चीजें आपकी मूवी का नाम याद नहीं, कुछ एक तो गाना और मेरठ का, लेकिन दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल एकदम हमेशा याद रहती हैं।
0: हाँ, मेरठ के साथ तो मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। एक्चुअली मेरा हाई स्कूल वहाँ का है। माय डैड वाज पोस्टेड देयर, तो इसीलिए मेरठ में हम कुछ साल रहे
1: फ्रॉम
0: थे।
1: विच स्कूल
0: अरे ये सब बातें मैं ऑफ एयर करती हूँ, यू आर ऑन एयर राइट नाउ। मुझे लगा आपने गिव अवे के लिए कॉल किया, बट लेट मी टेक यू ऑफ एयर। ठीक है, लेट मी जस्ट गिव दिस गिव अवे। आई थिंक नेक्स्ट कॉलर है, वो गिव अवे के लिए कॉल करें, बट डू कॉल मी बैक व्हेन आई एम ऑफ एयर। ठीक है, डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर मेमोरीज ऑफ मेरठ। आप मेरठ के ही हैं?
1: या आई एम फ्रॉम मेरठ।
0: ठीक है, चलिए, आई विल वेट फॉर योर कॉल। ठीक है, ऑल राइट, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू।
1: थैंक यू।
0: जी, सो कॉल्स आ रही हैं। आप मुझे बताइए, द मूवी वेयर आमिर खान एंड संजय दत्त हैव शेयर्ड द स्क्रीन, ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। आई एम गोइंग टू प्ले कंटिन्यू प्लेइंग दिस सॉन्ग। संजय दत्त के ऊपर पिक्चराइज्ड है। एंड 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। आप मुझे कॉल करके बताएं कि संजय दत्त एंड आमिर खान की कौन सी वो फिल्म है।

अगर आप ट्राई कर रहे हैं कॉल करने का एंड आई डिडंट आंसर योर फोन, मीनिंग आई वाज स्पीकिंग टू पुलकित जो कि आज हमारे विनर रहे हैं चंडीगढ़ बाइट्स गिव अवे के. इफ यू स्टिल वांट टू जस्ट कम ऑन एयर एंड से समथिंग अबाउट फ्रेंडशिप और द फिल्म्स और द सॉन्ग्स और एनीथिंग, डू कम ऑन एयर और आई कैन जस्ट इवन टॉक टू यू ऑफ एयर. क्योंकि वाइल आई वॉज स्पीकिंग टू पुलकित तो मेरे से कुछ कॉल्स जो हैं मिस हुई थी, बट दैट डजेंट मीन दैट आई वॉज इग्नोरिंग योर फोन कॉल. इट्स जस्ट दैट आई वॉज बिजी ऑन द अदर लाइन, सो यू आर वेलकम टू कॉल मी बैक अगेन. ये जो सॉन्ग है रॉकी फिल्म दैट केम आउट इन 1981, संजय दत्त एंड टीना मुनीम पर फिल्माया गया. ये फिल्म भी उन्हीं की थी एंड ये सॉन्ग भी उन्हीं पर ही फिल्माया गया. क्वेश्चन मैंने पूछा था कि संजय दत्त एंड आमिर खान की कौन सी फिल्म है जिसमें वो इकट्ठे, द ओनली वन फिल्म दैट देव कम टुगेदर एंड शेयर्ड द बिग स्क्रीन इज पीके. बहुत अच्छी फिल्म थी. क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है, ये वाला सॉन्ग, फिल्म का नाम थ्री इडियट्स इन विच आमिर खान एंड एवरीबडी एल्स डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब.

इतनी हार्ट वार्मिंग, इतनी इमोशनल, इतना अच्छा इसमें ड्रामा, इतनी अच्छी स्टोरी, एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म वाज सो हार्ट वार्मिंग, हार्ट टचिंग. मैसेज इतना अच्छा था, सोशल मैसेज. नॉट दैट आई एम एडवोकेटिंग और प्रमोटिंग एनी वन एक्टर और एनी वन डायरेक्टर, लेकिन जस्ट ओवरऑल इन द मॉडर्न सिनेमा ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी. बहुत अच्छा मैसेज था. Music was fantastic. Every actor, every character in the film was so appropriate. काफी अच्छी फिल्म बनी थी Three Idiots, and definitely जितनी बार देख लो इस फिल्म को उतनी बार मजा आता है. राजकुमार हिरानी ने तो काफी कमाल कर ही दिया था इस फिल्म के थ्रू, and then आगे चलकर उन्होंने फिर वो PK भी बनाई, जिसका मैंने सवाल पूछा था कि संजय दत्त एंड आमिर खान की द ओनली वन फिल्म वेयर दे हैव कम टुगेदर. एंड यस, द आर लिसनर वाज करेक्ट, द कॉलर पुलकित उनका नाम, एंड उन्होंने सही जवाब दिया. ही वन द गिव अवे फॉर टुडे. और आमिर खान की तो फिल्मों में कई ऐसे हैं जो एलिमेंट्स जो कि दोस्ती पर हैं. उनकी कितनी सारी फिल्में देख लो, जो जीता वही सिकंदर से लेकर इवन अप टिल द रीसेंट टाइम्स. उन्होंने काफ़ी फ्रेंडशिप वाला जो एंगल है उस पर फोकस उन्होंने कई सारी फिल्मों में किया है. फॉर एग्जाम्पल दिस वन विच रियली इज़ गोइंग टू टेक अस बैक टू गुड ओल्ड डेज. नॉट टू लॉन्ग अगो, रीसेंट टाइम्स की ही फिल्म है, लेकिन ये हर इंसान जिसने ये फिल्म देखी है उनको ये फिल्म बहुत पसंद है. स्टोरी, मूवी का म्यूज़िक, एवरीथिंग अबाउट द फिल्म वॉज very nice.

We're headed towards a short commercial break. Break के बाद आके कंटिन्यू करेंगे. फ्रेंडशिप डे, इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड लेट मी नो. आई विल बी हैप्पी टू प्ले इट हियर. दिस इज आर जे एक रूप स्टूडियो. फोन नंबर इज 972-235-5555. आई विल बी राइट बैक.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
4: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
5: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
6: Lekin aapke doctor ka appointment milna usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
7: Tarikh par tarikh.
2: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
6: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
8: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189, kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
9: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम।
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
12: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
12: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D5 एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
14: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
14: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

0: इस सॉन्ग को मैं देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ, क्या इनमें पर्किनेस है तीनों में? इतने हाई स्पिरिटेड, जंप करके इधर पहुंच जाते हैं, जंप करके उधर पहुंच जाते हैं, बिकॉज ये तीनों उस टाइम पर इतने यंग थे, काजोल, रानी मुखर्जी एंड शाहरुख खान. एंड अब अगर इनको बोलो रिक्रिएट करो तो अब आई डोंट थिंक वो वाला मैजिक होगा, बिकॉज यूथ हैज़ इट्स ओन एनर्जी, इट्स ओन आई गेस हाई स्पिरिटेडनेस. तो ये सॉन्ग, ये फिल्म, इसमें फ्रेंडशिप भी दिखाई थी, इसमें प्यार भी था, इसमें सैक्रिफाइस भी थी, इसमें बहुत कुछ मेलो ड्रामा भी, वेल बहुत कुछ मेलो ड्रामा तो नहीं मैं कहूँगी, बट द स्टोरी वॉज रियली नाइस. करण जौहर की फिल्म ये, और इसमें शाहरुख, काजोल एंड रानी मुखर्जी, दे आर फ्रेंड्स वाइल दे आर इन दिस, आई थिंक कॉलेज में पढ़ते होते हैं या स्कूल में, आई डोंट रिमेम्बर. बट इसमें अर्चना पूरन सिंह भी हैं, अनुपम खेर भी हैं, एंड सभी जो हैं दे लुक, एवरीबडी लुक्स सो मच यंगर, बिकॉज ये आई थिंक लेट 90s की फिल्म है, 1998 की फिल्म है. वंडरफुल फिल्म और सॉन्ग भी बहुत अच्छा है. आई थिंक इट्स अ गुड सॉन्ग टू बी प्लेड ऑन अ फ्रेंडशिप डे. ओमर ख्वाजा कम्युनिटी में अटॉर्नी ओमर ख्वाजा इज अवेलेबल, एंड इफ यू नीड हिज हेल्प ही विल बी प्रेजेंट एंड ही विल फाइट योर केस. इफ यू नीड द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व, ही विल हेल्प यू ऑब्टेन दैट कॉम्पेंसेशन. इफ गॉड फॉरबिड यू आर इन्वॉल्व इन अ पर्सनल इंजरी एक्सीडेंट, ओमर ख्वाजा इज द अटॉर्नी दैट विल हेल्प यू थरली. डीलिंग विद insurance companies can be stressful, you need an attorney that will make sure that you are well compensated and you don't have to pay until you win. For a free consultation with Omar Khwaja, here is the phone number 469-350-46, or you can visit his website, which is attorneyomar.com. फ्रेंडशिप डे पे थोड़ा सा टच अप ऑन कर रही हूँ अबाउट 9 o'clock के ब्रेक के बाद. फ्रेंडशिप डे आज यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज टुडे August 1st, और द फर्स्ट संडे, August 2nd इज द डेट टुडे, द फर्स्ट संडे ऑफ August इज सेलिब्रेटेड एज फ्रेंडशिप डे, नॉट ओनली इन यूनाइटेड स्टेट्स बट ऑल्सो ऑब्वियसली इंडिया में तो हम बहुत मनाते थे. आई गेस उस टाइम फ्रेंडशिप्स भी डिफरेंट होती थी, द डायनामिक्स वर डिफरेंट, द लैंडस्केप वॉज डिफरेंट. तो इसीलिए हम अभी भी इवन यहाँ पर आके भी इस दिन को इतना याद करते हैं और इतनी अच्छी तरह मनाते भी हैं अगर हो सके तो. हमारे एक लिसनर जिन्होंने ये रेट्रो सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रिक्वेस्ट किया, आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग, मेरी दोस्ती मेरा प्यार.
1: जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग.
0: थोड़ा सा रिवाइंड करती हूँ, एकदम से स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा पहले म्यूजिक सुनते हैं.

कितना अच्छा सा सॉन्ग है, मेरी दोस्ती मेरा प्यार. और ये आवाज मोहम्मद रफी साहब, ओ माय गॉड, व्हाट अ क्लासिक, वंडरफुल, टाइमलेस, एजलेस वॉइस ही हैज़. इनकी आवाज़ के सॉन्ग्स आई डोंट थिंक आजकल के कोई भी सिंगर गा सकते हैं. इनकी आवाज़ में बहुत मैजिक था. वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन द डार्क इज़ बेटर दैन वॉकिंग अलोन इन द लाइट. ऐसा मैजिक होता है फ्रेंडशिप का, ऐसा मैजिक होता है एक फ्रेंड के होने का कि आप डार्क में भी उनके साथ जा सकते हैं वर्सेस वॉकिंग अलोन इन लाइट. ये वाला सॉन्ग लगान फिल्म का है, इसमें फ्रेंडशिप वाली तो शायद इतनी बात नहीं है, लेकिन मितवा को मोटिवेट कर रहे हैं, फ्रेंड को मोटिवेट कर रहे हैं कि आओ टीम को ज्वाइन करें. सो आई गेस द इंटेंशन इज टू अपलिफ्ट द अदर पर्सन. सो हियर यू गो.

बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है. इसका मल्टीपर्पज है इस सॉन्ग का. एक तो फ्रेंडशिप डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स को मोटिवेट कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स टीम स्पिरिट है, कम्युनिटी वाली जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिख रही है. और जस्ट बीइंग अ सोशल एनिमल, लिविंग इन अ सोशल, इन अ सोसाइटी, जितने भी ये जो सोशल नॉर्म्स हैं वो इस सॉन्ग में, इस गीत में, इस सीन में और ओवरऑल इस मूवी में हमने देखे. सो लगान का ये सॉन्ग बहुत अच्छा. ऑफ कोर्स द फिल्म हैंड्स डाउन वाज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स. एजी फिनटेक्स जो हैं बहुत ही जाने माने फाइनेंशियल टैक्सिंग वाली जो है, सर्विसेज वाली जो है कंपनी है. एंड ये वाला जो शो है इज़ ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स. लाइक आई सेड, दे आर वन ऑफ द वेल नोन कंपनीज अराउंड टाउन. दे आर फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द US. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड दे गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. 469-942-9888 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज़ agfintechs.com. फ्रेंडशिप डे है. और एक और बड़ी अच्छी फिल्म आई थी जिसमें फ्रेंडशिप के एलिमेंट्स दिखाए थे, एंड दैट वाज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. अर्जुन कबीर एंड इमरान थे तीन कैरेक्टर्स. और उसमें जो है फ्रेंडशिप के काफ़ी सारे एंगल्स, एलिमेंट्स दिखाए थे. एंड वन ऑफ द वेरी पॉपुलर फिल्म्स. सो उसी का ये वाला मैं सॉन्ग प्ले करूँगी. एंड आई थिंक दिस इज़ अ लॉन्ग इनफ सॉन्ग विच विल टेक अस टू द एंड ऑफ दिस शो विच इज़ गोइंग टू बी इन 4 मिनट्स. पेंटेड रेड, आई गेस पेंट द टाउन रेड कह सकते हैं. जब इकट्ठे होते हैं फ्रेंड्स तो फिर पेंट द टाउन रेड हो ही जाता है. देर सो मेनी स्पेशल मोमेंट्स, देर इज़ अ सेलिब्रेशन इन इटसेल्फ. जस्ट गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग. यही है सॉन्ग का नाम, पेंटेड रेड. पेंट इट रेड, एक जुनून. फिल्म का नाम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ये वाला सॉन्ग होगा आज के शो का आखिरी सॉन्ग. मैं हूँ आरजे एकरूप, अब लेती हूँ इजाजत. मेरे बाद अब यहाँ पर 10 बजे आएंगी मधुलिका. शी विल बी हियर अंटिल 12. एंड मेरी मुलाकात फिर आपसे अगले संडे 7 o'clock होगी. 7 to 10 इज द टाइम फॉर माई शो. आप अपना ध्यान रखिए. दिस इज़ प्रॉबेबली द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल फॉर अ लॉट ऑफ यू इंक्लूडिंग माई सेल्फ. बच्चे वापस जा रहे हैं स्कूल कल से. सो गुड लक टू ऑल ऑफ द चिल्ड्रन दैट आर गोइंग बैक टू स्कूल फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर. गॉड ब्लेस देम एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू नेक्स्ट ईयर कमिंग अप टुमारो. एनी वे, अब मैं यहाँ से जाती हूँ. मिलूंगी मैं आपको अगले संडे. दिस इज़ आरजे एकरूप. बाय बाय.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
6: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
8: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
9: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy.
13: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड Basera Grand only.
13: Call Hari Basera on 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
18: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

जिंदगी गुजर जाए पर दोस्ती कम ना हो, याद हमें रखना चाहे पास हम ना हो, कयामत तक चलता रहे ये दोस्ताना हमारा, दुआ करें कि कभी ये रिश्ता खत्म ना हो। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों। वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फन एशिया रेडियो 104.9 FM पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। एंड आज है इतना प्यारा दिन, राइट, दोस्ती को लेके, फ्रेंडशिप डे। सो वी आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग फ्रेंडशिप डे टुडे। वी विल बी सेलिब्रेटिंग आवर फ्रेंड्स। सो इफ यू हैव एनी सॉन्ग्स, एनी डेडिकेशंस, एनी ब्यूटिफुल मेमोरीज, एनी नटखट मेमोरीज, डू शेयर इट विद अस। द स्टूडियो नंबर 9722355555। अ बिग शाउट आउट टू माय दोस्त एक रूप फॉर अ फैब फैब शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM। एंड यस, कमिंग बैक टू जस्ट चिल। सो जस्ट चिल में होता है संडे को फन फैक्ट सेगमेंट। सो वी विल बी शेयरिंग सम फन फैक्ट्स रिलेटेड टू फ्रेंडशिप एंड ऑफ कोर्स सेलिब्रेटिंग आवर फ्रेंड्स टुडे।

इसको तो हम दोस्ती का एंथम भी बोल सकते हैं, राइट? जब भी दोस्ती की बात हो तो शोले का ये गाना हमें ज़रूर याद आता है, राइट? सो आपको मैंने जैसे कहा कि संडे हमारा होता है फन फैक्ट सेगमेंट, आपको मैं आज फ्रेंडशिप को लेकर ही कुछ फन फैक्ट्स बताऊंगी। आपको पता है जो दोस्त है ना, दे कैन लिटरली लाइक सच में रिड्यूस स्ट्रेस। यू नो, जस्ट टॉकिंग टू अ क्लोज फ्रेंड कैन लोअर योर स्ट्रेस हॉर्मोन्स एंड मेक यू फील काम। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब कोई बीमार हो कि यार ज़रा दोस्त लोग जाके विजिट करो तो आपको अच्छा लगे। सो दोस्ती जो है एक तरह की हीलिंग प्रोसेस है। सो डेफिनेटली यू शुड हैव एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन एंड दे शुड ऑल बी योर ट्रू फ्रेंड्स, यू नो। तो फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती जो है, बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है।

Well, that was cute, right? अतरंगी यारी, taken from the movie वजीर. अच्छा, आपको पता है कि वैसे तो on an average a person has hundreds of acquaintances, right? But only about five true close friends. क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी, होता है ना, कि वैसे तो कहने को बहुत से दोस्त हैं, लेकिन सचमुच अगर आप अपने दिल से पूछें तो करीब चार या पांच आपके खास दोस्त होंगे जो हर चीज़ के लिए बोलेंगे, मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहा है.

जस्ट लाइक दिस सॉन्ग, जैसे होता है ना कि कोई भी मुसीबत आई है, शाहरुख खान कह रहे हैं मैं हूं ना, इसी तरह जो अटर्नी ओमार ख्वाजा है वो बोलते हैं कि भाई अगर आप कहीं कोई परेशानी में फंस गए हैं, कहीं कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में अटक गए हैं, या कहीं स्लिप या फॉल इंसिडेंट हो गया है, नहीं समझ में आ रहा कि किससे मदद मांगी जाए, तो आप अटर्नी ओमार ख्वाजा को कॉल करें। ये ना केवल आपका केस लड़ेंगे बल्कि आपको कॉम्पनसेशन भी सही सही दिलवाएंगे, साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनीज का स्ट्रेस से भी वही डील करेंगे। एंड मज़े की बात, आप तब तक उन्हें कुछ भी पे नहीं करेंगे जब तक वो आपका केस जीत नहीं जाते। सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप अटर्नी ओमार ख्वाजा को कॉल करें। द नंबर इज 4693005046 और यू कैन विजिट अटर्नी ओमार .com। दैट्स अटर्नी ओमार .com।

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 पर, या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
3: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
4: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका. लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है.
3: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
4: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
3: और एंटरटेनमेंट,
4: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में है.
3: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
4: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
11: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
14: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
13: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
15: Jud jao apni dharti se. Desiyon ka sachcha radio channel. Phonesia 104.9 FM.

You're tuned in to 104.9 FM, Funisha Radio, bringing the community together. This is Madhulika, लेकर आई हूँ जस्टिल, जहाँ कर रहे हैं हम आज फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट. जी हाँ, जस्ट चिल तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वी आर सेलिब्रेटिंग आर फ्रेंडशिप्स, राइट? सो फ्रेंडशिप इज़न्ट अबाउट हु यू हैव नोन द लॉन्गेस्ट, इट्स अबाउट हु वॉक्ड इनटू योर लाइफ एंड नेवर लेफ्ट, है ना? एक जो सच्चा दोस्त है, ही और शी मेक्स द गुड टाइम्स बेटर and the hard times is here. Well, I'll be with you till noon. Studio ka number 972-235-5555. If you have a song request, a dedication for your friend, a beautiful memory, some fun memories that you have shared with your friends, do give me a call. We would love to hear what you have to say.

Well, that was of course taken from the movie Zanjeer. अच्छा, आज हम celebrate कर रहे हैं friendship day, right? दोस्ती वो नहीं जो दुनिया को दिखलाई जाए, दोस्ती वो है जो दिल से निभाई जाए. And just for fun, I want you to tell me 5 songs जो आमिर खान के हों और जो दोस्तों के साथ हों, right? So आमिर खान की इतनी सारी movies आई हैं, you just tell me 5 songs जो आमिर खान के हों और जो दोस्तों के ऊपर हों. So give me a call, 972-235-5555. I repeat, I want you to tell me 5 Aamir Khan songs which are amongst friends, right? जिसके वीडियो में दोस्तों के साथ वो कुछ मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी. So anything related to friendship of Aamir Khan songs, you have to tell me 5 of them.

जी हाँ, आपको भी आपका ड्रीम होम बिल्कुल मिल जाएगा अगर आप रास्ता करेंगे ड्रीम होम मोगेज के साथ. जी हाँ, योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मोगेज सिंस 1998. पता है ड्रीम होम मोगेज जो है उन्होंने कितनी सारी फैमिलीज को अक्रॉस द कंट्री हेल्प की है टू टर्न होम ओनरशिप इन टू रियालिटी विद पर्सनलाइज मोगेज सोल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. स्पेशली अगर आप पहली बार घर ले रहे हैं ना यू, एंड वो भी यहाँ ले रहे हैं, तो यू रियली डोंट नो द प्रोसेस. तो दे विल रियली हेल्प यू विद ऑल ऑफ दैट. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 states और इनकी जो एक्सपीरियंस टीम है इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शन टेलर्ड टू योर नीड्स. सो स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टूडे. जी हाँ, चाहे आप पहला अपना घर खरीद रहे हैं या अपग्रेड करवा रहे हैं या रीफाइनेंसिंग के लिए देख रहे हैं, देन ड्रीम होम मोर्गेज कैन रियली हेल्प यू. द नंबर टू देम इज 972-245-5626 और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स. ड्रीम होम मोर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. और जैसा कि मैंने कहा कि आप मुझे कॉल करके आमिर खान के कोई 5 ऐसे गाने बताएं जो दोस्तों के साथ हों और लड़ी लग गई है फोनों की. सो यस, बहुत से प्यारे प्यारे गाने हैं आमिर खान के, एंड द वन दैट आई लाइक द मोस्ट, और कई लोगों ने इस गाने के बारे में बताया, सो हियर इट इज, एंजॉय.

Well, that fun number was of course taken from the movie Dil Chahta Hai. And सच में दिल यही चाहता है कि हमेशा दोस्तों के साथ रहें. Because to be honest, दोस्त जो हैं, they are our chosen family, है ना? And दोस्तों के साथ, especially अगर कोई कॉलेज की पार्टी हो, कुछ फेयरवेल हो रही हो, सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, they all know the ups and downs, तो वो सब जो कॉन्सर्ट पे जाना, you know, उसका एक अलग ही मज़ा है. सो आमिर खान के बहुत से ऐसे गाने हैं जो दोस्तों के साथ हैं, एंड दिस वन आई थिंक इज अनदर जिससे यू नो बिल्कुल दिल छू जाता है. ऐसी लिरिक्स हैं इस गाने की, एंड आई एम श्योर यू वुड हैव गेस्ड इट. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कयामत से कयामत तक, जब फेयरवेल हो रही है एंड आमिर खान जो है अपने दोस्तों से क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today. Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
5: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज हैं यार?
6: तो चल, उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं.
5: What?
7: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen, and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: बेटा, 95% आए?
13: हाँ मम्मी।
12: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
14: मेरा?
12: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
14: वो
15: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
16: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
17: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
18: The Dill of Dallas. Heart to heart.

फ्रॉम द मूवी याराना, दैट वॉज तेरे जैसा यार कहाँ. दोस्ती जो है ना, एक्चुअली दोस्तों की जो दोस्ती है उसमें कभी कोई रूल नहीं होता है, और ये सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता है. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे. आई डू होप दैट यू गो आउट एंड एन्जॉय विद फ्रेंड्स एंड विद फैमिली. यू नो यू कैन गो टू Page 3 Eatery, बाय द वे, यू नो, बिकॉज इट्स एट हब 121, एंड Page 3 Eatery में आपको बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड भी मिलेगा विद मॉडर्न फ्लेयर. कबाब्स, चाट, फ्यूजन बाइट्स, मॉक टेल्स, यू जस्ट नेम इट. वाइब्स काफ़ी वाइब्रेंट है वहाँ की, सो यू कैन गो देयर फॉर ब्रंच, फॉर लंच, फॉर टी, फॉर कॉफ़ी, फॉर डिनर. इट्स परफेक्ट फॉर फूडीज, डेट्स एंड फ्लेवर चेजर्स. डू विजिट Page 3 Eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स. आज फ्रेंडशिप डे है तो दोस्तों के साथ टाइम बिताना तो बनता है. वेल, दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, just chill, celebrating friendship day today. So we are listening to all those beautiful songs jo Bollywood hamare liye lekar aaya hai, all related to friends.

जी हाँ, रूल्स जो हैं दे डू कंट्रोल, एंड कई बार इसी कंट्रोल की वजह से हमें हमारे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, बिकॉज़ भाई वो सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है. तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप पांचों दिन यानी वीकडे में बिजी हैं एंड फिर भी आप जब चाहें अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं तो कैसा लगेगा. जी हाँ, टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में ही बता रही हूँ, जो 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी. और अब ये एक और नए नाम से एक सेकेंड लोकेशन फ्रिस्को में खुली है, एंड दैट इज़ ल्यूनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. ल्यूनॉक्सी मेडिकल जो है, इट ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, फिर हो चाहे अर्जेंट केयर, या आपको कोई इन हाउस लैब टेस्टिंग करानी है, एक्सरेज कराने हैं, सिटी स्कैंस कराना है, आपको कहीं वेट नहीं करना है, इवन कार्डियक डायग्नोस्टिक्स या फिर हिमालयन मेड स्पा की सर्विसेज यूज़ करनी है, दे आर ऑल अंडर वन रूफ. और सबसे अच्छी बात, दे आर ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM to 8 PM, एंड आप वॉक इन कर सकते हैं एनी टाइम, देर इज़ नो अपॉइंटमेंट नीडेड. तो है ना ये मज़े की बात. सो टेक्सास प्राइमरी केयर विद अ न्यू नेम ल्यूनॉक्सी मेडिकल इन फ्रिस्को, सो यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, दे आर ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM to 8 PM. वेलकमिंग बैक टू दोस्तों के साथ, जो है ना स्कूल लाइफ में भी हम बिल्कुल बिंदास हो जाते हैं. डिपेंड्स कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है. इफ़ इट्स लाइक फुल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रेंड्स, देन इट्स अ वेरी स्ट्रांग सर्कल, क्योंकि हर मोमेंट के लिए, हर सिचुएशन के लिए आपका एक दोस्त रहता है ना, कि भाई हम यहाँ के सिकंदर हैं.

होता ही है ना कि जब दोस्त साथ में हो तो आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। अच्छा, रक्षाबंधन आ रहा है और इसीलिए फनीशिया एंड चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट आपके लिए कुछ मज़ेदार लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, दिस रक्षाबंधन फनीशिया रेडियो एंड चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरॉन्ट वॉन्ट टू हेयर योर मोस्ट अनफॉर्गेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर, क्योंकि शायद पैदा होते ही जो आपका पहला दोस्त होता है ना, वो आपका भाई या बहन होता है, राइट? सो सेंड अस अ 1 मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप एट 2148377147 और आप जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग डेली प्राइजेस जैसे कि डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एन अनफॉर्गेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरॉन्ट। जी हाँ, आपको बस करना ये है कि आपको एक 1 मिनट नोट भेजना है रिलेटेड टू सम फन ब्यूटिफुल मेमोरी ऑफ यू नो योर सिबलिंग्स। सो फॉर कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स चेक आउट फनेशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरॉन्ट वेयर अनफॉर्गेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। यू मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड व्हेन यू गो आउट ऑन दिस ड्राइव टू चौकटाओ कैसीनो रिमेंबर टू प्ले दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

जी हाँ बिल्कुल, दिल ये भी चाहता है ना कि आप बढ़िया एसी में रहें, फुल ऑन चमचमाता रहे आपका घर, आपका स्टोर, आपका ऑफिस, लेकिन एनर्जी बिल थोड़ा कम आए, राइट? ये तो सभी का दिल चाहता है कि भाई एनर्जी बिल जब आए तो जोर का झटका धीरे से लगे, राइट? सो वेल, घरों का एनर्जी बिल आप अगर सोच सकते हैं तो बिजनेस ओनर्स का सोचिए. सो दिस इज स्पेशली फॉर बिजनेस ओनर्स. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, देन तारा कमर्शियल एनर्जी को रखें याद. जी हाँ, यू कैन ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी, प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002 विथ कंपेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स. आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 844-428-2808, और यू कैन विजिट taraenergy.com टुडे. सो एज यू नो, वी आर सेलिब्रेटिंग फ्रेंडशिप डे टुडे, राइट? तो फ्रेंडशिप को लेके बॉलीवुड में बहुत से कोट्स हैं. वेल, कुछ कोट्स जो बॉलीवुड के नहीं हैं आई कैन शेयर, जैसे कि ट्रू फ्रेंडशिप इज इन मेजर्ड बाय टाइम बट बाय ट्रस्ट, या फिर ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स डोंट जज ईच अदर, दे जज अदर पीपल टुगेदर, या फिर कि फ्रेंडशिप इज फाइंडिंग समवन हु इज जस्ट एज क्रेजी एज यू आर. तो ये तो हुए कुछ ऐसे नोन कोट्स, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बॉलीवुड में इतने सारे फ्रेंडशिप को लेके कोट्स हैं, टेल मी एनी थ्री कोट्स ऑन फ्रेंडशिप जस्ट फॉर फन. सो टेल मी एनी थ्री कोट्स ऑन फ्रेंडशिप फ्रॉम बॉलीवुड मूवीज, राइट? एंड कीप लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम, एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल.

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi, ab sab kuch milega ek hi jagah, HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB, here everything is better.
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
6: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
2: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
9: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में? सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
10: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.
11: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

क्यों मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त, क्यों गम को बांट लेते हैं दोस्त, न रिश्ता खून का न रिवाज से बंधा है, फिर भी जिंदगी भर साथ देते हैं दोस्त। वेल यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, मैं हूं मधुलिका, लेकर आई हूं जस्ट चिल, जहां कर रहे हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। वेल वी आर सेलिब्रेटिंग फ्रेंडशिप डे टुडे, वी आर लिस्निंग टू ऑल दोज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स विच आर डेडिकेटेड टू फ्रेंड्स। तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि आज भी जब हम अपने बचपन के दोस्तों से या स्कूल के दोस्तों से या कॉलेज के दोस्तों से या कुछ सालों पहले के दोस्तों से जब मिलते हैं और वो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, उसी बात पर उतना ही हंसते हैं जितना शायद तब भी नहीं हंसे होंगे। इट इज़ सो मच फन एंड इट इज़ सो रिजुविनेटिंग, यू नो, लाइक आप सब अपने गम भूल जाते हैं जब अपने दोस्तों के साथ वही पुराने किस्से, वही पुरानी बातें याद करते हैं।

पुरानी जीन्स और गिटार, वो होता है ना कि जो हमारे पुराने दोस्त हैं या जो सच्चे दोस्त हैं वो सचमुच पुरानी जीन्स जैसे ही होते हैं. दे आर जस्ट सो कंफर्टेबल टू बी अराउंड विद. कहते हैं ना, फ्रेंड्स कैन रिड्यूस स्ट्रेस. आपका जो ब्रेन है, इट ट्रीट्स क्लोज फ्रेंड्स लाइक फैमिली. लाफ्टर इज कंटेजियस. वी आर मच मोर लाइकली टू लाफ व्हेन वी आर विद फ्रेंड्स, इवन इफ द जोक इज इन दैट फनी. लेकिन साथ में उसी जोक पर आप पता नहीं कितना हंस सकते हैं. एंड ये भी माना जाता है दैट फ्रेंड्स जो हैं, दे इन्फ्लुएंस योर हैबिट्स. इसीलिए कहते हैं कि अपनी जो संगति है वो सोच समझ कर करें, कि आपके जैसे दोस्त होंगे आप उसी तरह की हरकतें भी करेंगे. लेकिन ये बात फैक्ट है कि दोस्त जैसा भी हो, ऐसा हो वैसा हो, हर एक तरह का फ्रेंड ज़रूरी होता है. एंड हर दोस्त में एक खासियत होती है दैट दे कैन रियली काम यू डाउन एंड मेक यू स्माइल एंड लाफ.

taken from the movie Rangila. That was यारों सुन लो जरा, वो होते हैं ना अपुन के जैसे ही जीना, दोस्त जो हैं वो टोटल चिल मोड में रहते हैं. एंड जब आप अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं तो वन अनदर प्लेस दैट आई कैन सजेस्ट वे यू कैन गो हैव फन एंड एन्जॉय सम डिलिशियस मील इज द फ्लेवर लाउंज. जी हाँ, गुड फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड दैट वन आवर ऑफ द डे यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू, राइट? सो टर्न योर रेगुलर इवनिंग इंटू अ फ्लेवरफुल वन विद हैप्पी आवर एट द फ्लेवर लाउंज, द परफेक्ट प्लेस टू अनवाइंड, सिप एंड स्नैक एंड कैच अप विद योर फेवरेट पीपल. सो एवरी वीकडे 5 to 7 PM यू गेट 20% off on appetizers, mocktails and cocktails. So yaad rakhiye, weekdays 5 to 7 PM you are getting 20% off on any appetizers, mocktails and cocktails. And then when the party gets bigger, well, let the Flavor Lounge catering take over. जी हाँ, आप enjoy करें अपने दोस्तों के साथ और catering की चिक चिक जो है वो Flavor Lounge पर छोड़ दें. चाहे वो birthday या कोई weddings या कोई corporate event या फिर कोई private celebration, well, bring their signature flavors straight to your occasion. So visit the Flavor Lounge जो कि Preston Road, Frisco में है, and discover more at theflavorlounge.com. There are more details that you can go and see. The Flavor Lounge, from happy hour to your happiest occasion.

वेल ऐसा ही होता है ना कि जब दिल यही बोलता है कि अगर दोस्त साथ में है तो आई बी ऑल राइट। अच्छा, दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट्स और फेयरवेल एंड पार्टीज में जाना तो ठीक है, मज़ा आता है, लेकिन अगर वही दोस्त आपकी कोई शादी वादी में आ जाए या आप कोई मिलके किसी की शादी अटेंड करें ना, वो उसका एक अलग ही लेवल का मज़ा होता है। मतलब हल्दी सेरेमनी हो और वो लिटरली होली में टर्न हो जाती है, बिकॉज दोस्त जो है वो अपनी मस्ती करने से बाज नहीं आते।

Taken from the movie Zindagi Na Milegi Dobara. That was Senorita, right? Well, it's always fun talking to you all, playing some melodious songs along the way. It's time for me to say bye-bye. Lekin, jaane se pehle kehna chahungi ki kis had tak jana hai, ye kaun janta hai? Kis manzil ko paana hai, ye kaun janta hai? Dosti ke do pal ji bhar ke jilo, kis roj bichhad jana hai? ये कौन जानता है. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे. डू मेक श्योर दैट यू हैव लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स एज दे आर द हार्ट बीट्स, यू नो दे रियली मेक लाइफ फन. सो वेल, मैं मिलूंगी आपको अगले शनिवार सुबह 10 बजे इन जस्ट चिल. आप कहीं जाइएगा नहीं, डू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, एज यहाँ हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे. कमिंग अप नेक्स्ट इज नीलम. मैं मिलूंगी एज आई सेड नेक्स्ट सैटरडे इन जस्ट चिल सुबह 10 बजे, जहाँ करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 पर, या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
4: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to करना ही पड़ेगा मैडम.
7: डोंट लेट डेट रूइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
8: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
9: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं.
8: व्हाट?
10: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन. पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड. ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd. विजिट फन पिज़्ज़ा kitchen.com for more details.
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
11: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
12: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
13: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
15: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
11: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
15: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

KZAB 104.9 FM फनी शरीरों पे सुन रहे आप मुझे यानी नीलम को और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी दोस्तों, आपका और हमारा साथ होगा इस सुरमई दोपहर के साथ, शाम नहीं दोपहर, कड़ी दोपहर के साथ, जहाँ हवा गरम गरम है लेकिन सुरों के सांस पर ताल पर हम आपकी जिंदगी में थोड़ी सी मुस्कुराहट ला पाए इस संगीत भरे कार्यक्रम के साथ। तो बस हमारा वक्त और आपका वक्त भी बिल्कुल, हमें लगेगा कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई। और मैं हूं नीलम एक बार फिर से यहां 104.9 FM फनीशा रेडियो पे। इस सेगमेंट में आपका और हमारा साथ सिर्फ एक घंटा 2 बजे तक ही होता है, लेकिन कोशिश होती है कि इस अगले घंटे के दौरान आपके लिए कुछ ज़्यादातर गैर फिल्मी गाने लाऊं। प्राइवेट एल्बम्स की बातें होती है, OTT प्लेटफॉर्म वेब सीरीज की बातें होती है, कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, सूफी बैंड वगैरह वगैरह, कुछ कलाकारों की बातें, साज और आवाज़ की बातें, ताल की बातें, यहाँ मेरे यानी कि नीलम के साथ एवरी संडे बिटवीन 1 and 2 PM ऑन 104.9 FM। रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत ये गीत।

रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। और कभी कभी ये बात होती है राइट, इवन आपकी आजू बाजू, आप सराउंडिंग यू, और आपने कहीं पे भी देखा होगा, फिल्म इंडस्ट्री की बात हो या किसी भी इंडस्ट्री की, कि कुछ कलाकारों को उनकी जगह वो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, जो हमें लगता है कि ही सच अ और शी सच अ ग्रेट एक्टर या एक्ट्रेस या सिंगर वगैरह वगैरह, जो टैलेंट है उसके हिसाब से उन्हें वो मकाम वो जगह नहीं मिलती। मुझे हमेशा, जब भी मैंने रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ सुनी है, जब भी उनके कोई भी गाने सुने, मुझे हमेशा लगा कि यू नो एज मच एज कैलिबर ही हैज़ और जितनी उनकी टैलेंट है, उस हिसाब से उन्हें कभी भी अपना मकाम नहीं मिला। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रूप कुमार राठौड़ ने जो संगीत के सफ़र की शुरुआत की थी, ही वॉज नॉट अ सिंगर इनिशियल, ही वॉज जस्ट अ तबला वादक। जी हाँ, उस्ताद माने जाते थे तबला में। एंड जो हमारे जगजीत सिंह साहब है, गज़ल सम्राट या अनूप जलोटा है, उनकी जब भी कॉन्सर्ट्स हुआ करती थी वो उनमें तबला बजाया करते थे। एंड ऑफकोर्स संगीत उनके रूह में उनके खून में था। क्यों भाई? क्योंकि उनके जो पिताजी है, उनके पिताजी का नाम है बेहद टैलेंटेड एंड अ वेरी बिग नेम चतुर्भुज राठौड़, वो उनके पिताजी का नाम था। एंड उनके भाई जो श्रवण राठौड़ है, उनका नाम है श्रवण राठौड़ और नदीम श्रवण, इफ़ यू रिमेंबर दोज गाइज राइट, नदीम श्रवण की जो श्रवण है वो रूप कुमार राठौड़ के सगे भाई है। तो इस तरह से उनके पूरे परिवार में संगीत तो था ही, शास्त्रीय संगीत सिखा था पिताजी से ही, रियाज भी करते थे, लेकिन कभी उन्होंने गाने नहीं गाए थे, ही वॉज जस्ट तबला वादक। लेकिन फिर इनकरेजमेंट के बाद, बहुत दोस्तों के साथ, जगजीत सिंह साहब ने भी उन्हें बहुत इनक्रेज किया था कि यू शुड ट्राई सिंगिंग, उनकी आवाज़ थी ही इतनी अच्छी गहरी थी, तब सिंगिंग में भी उन्होंने कदम रखा। एंड ही डिड सिंग, बहुत कम गाए लेकिन गाए हैं उन्होंने गाने, प्राइवेट एल्बम्स में भी उनके कुछ गाने हैं। बट एज आई सेड, यू नो, जब भी मैं उनकी आवाज़ सुनती हूँ मुझे लगता है कि जो मकाम उन्हें इंडस्ट्री में मिलना चाहिए था, जो गाने उन्हें मिलने चाहिए थे, वो शायद कहीं ना कहीं नहीं मिले। लेकिन खैर, हमारा काम है अच्छी आवाज़ें अच्छे गाने आपके लिए प्रस्तुत करें ऑन 104.9 FM।

रुआ रुआ इश्क हुआ है। वेल, अभी तो डैलस फोर्ट वर्थ में अगर आप किसी को पूछेंगे तो कहेंगे भाई रुआ रुआ गर्मी लगी है है ना। लेकिन हम आपके लिए लाते हैं कुछ ऐसे गाने कि मौसम कोई भी हो आपके दिल के मौसम को हम कर देते हैं बहुत ही म्यूजिकल ऑन 104.9 FM। लेकिन हेल्थ इज ऑल्सो ऑलवेज अ कंसर्न, राइट? तो चलिए मैं आपको एक नाम दे देती हूँ, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का, जिनका नंबर है 214-666-2259। यू कैन स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट और आपको राइट अवे मिल भी जाएंगी। आपको चाहे यू वॉन्ट टू गो फॉर एनी यू नो एनुअल फिजिकल केयर की बात हो या किसी भी विटामिन टेस्टिंग की बात हो या कोई भी कंसर्न हो आपके हेल्थ के लिए, तो पूरी 30 मिनट्स आपको बिल्कुल मिलेगी अटेंशन डॉक्टर की तरफ से। यू कैन आस्क मैनी क्वेश्चंस एंड वो पूरी बात होगी जो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में होनी चाहिए। एंड दैट इज पेशेंट हेल्थ प्राइमरी केयर। वंस अगेन इट इज 214-666-2259। अभी अभी जब मैं बात कर रही थी जगजीत सिंह साहब की कि भाई उनके साथ तबला वादक थे रूप कुमार राठौड़ की, और मैंने सोचा कि अगर मैं जगजीत सिंह साहब का नाम लूँ और उनकी आवाज़ हम ना सुने तो कैसे हो सकता है, राइट? इंसाफ नहीं होगा। आपकी आपका जो प्यार है जगजीत सिंह साहब के साथ या मेरा प्यार है, तो मैंने सोचा कि चलिए एक इतनी खूबसूरत गज़ल मेरे जहन में याद आई जो आपको सुनवाने जा रही हूँ, जिसमें एक नहीं तीन आवाज़ें, और तीनों आवाज़ आपको बहुत ही प्यारी लगेगी। ऑफकोर्स आप उनके तीनों के बड़े फ़ैन होंगे, जैसे कि लता जी, आशा जी एंड जगजीत सिंह। जी हाँ, आपने सही सुना, तीन धुरंधर साथ में ऑन दिस गज़ल।

तुमको भूल ना पाएंगे ऐसा लगता है। बहुत ही खूबसूरत ये बोल कलाम था निदा फाजली साहब का, जगजीत सिंह साहब के साथ आशा जी और उनके साथ लता जी की आवाज़। और ये जो एल्बम था उसका नाम था दिल कहीं होश कहीं, लेकिन ये गज़ल थी उसी एल्बम की। बस यही कोशिश होती है दोस्तों आपके साथ, जब भी ये मुलाकातें होती है, आफ्टरनून्स हमारी होती है आपके साथ एवरी वीकेंड, सैटरडेज एंड संडे, यहाँ पर कुछ कोशिश में ही ऐसी होती है कि चाहे फिल्मी गाने हो, गैर फिल्मी गाने हो, प्राइवेट एल्बम्स की, लेकिन जो भी गाने हो आपकी रूह को छू पाऊँ ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो। चलिए, गज़ल की बात निकली है, लता जी की बात निकली है, तो कल जब मैं शो कर रही थी मुझे एक फरमाइश आई थी, और कल चूँकि हमारे बॉलीवुड के गाने होते हैं, थीम बेस्ड गाने होते हैं, मैं उन्हें नहीं सुनवा पाई, और वादा किया था मलिक साहब, इफ़ यू आर स्टिल लिसनिंग, मलिक अख्तर साहब ने कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि लग जा गले सुनवा दीजिए नीलम जी। मैंने कहा कि देखिए वे लग जा गले जो है मदन मोहन साहब की, मैं बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम आपको नहीं सुनवा सकते यहाँ पे रेट्रो सॉन्ग्स, लेकिन उतनी ही खूबसूरती से पैपॉन जी ने बहुत ही खूबसूरती से कोशिश की है जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो आपने सुनी है बार बार ये बात हमारे साथ ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ओरिजिनली संग बाय लता जी एंड कंपोज्ड बाय मदन मोहन। 104.9 FM फन एशिया रेडियो, मैं हूँ नीलम टिल 2 PM और यहीं का आपका और हमारी ये म्यूजिकल साथ एवरी वीकेंड।

0: हमारी और आपकी मुलाकातें होती है वीकेंड्स में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी के कॉल्स के लिए। यू ऑल आर वेरी वेरी काइंड, और हमारी एक छोटी सी कोशिश को सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमर्शियल ब्रेक में जाने से पहले तारा, कमर्शियल एनर्जी को बिल्कुल याद करूंगी। 8444282808 इज द नंबर टू कॉल सिंस 2002। जी हाँ, विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड रिलायबल सर्विस, दैट इज तारा कमर्शियल एनर्जी। taraenergy.com इज द वेबसाइट। और हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, और भी कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने, नगमे, तराने आपकी खिदमत में टिल 2 PM।
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
3: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
2: What?
4: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
5: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, but sometimes even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है, ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन .com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
7: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
8: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
7: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
8: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
9: Beta, 95% aaye?
10: Haan mummy.
9: Good. Ab chaliye papa, aap apna report card dikhaiye.
11: Mera?
9: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: Aaj hi sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
14: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

एंड वेलकम बैक, दिस इज केजीएमपी 104.9 एफएम फनीशा रेडियो पे। मैं हूं नीलम आपके साथ। वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फनीशा रेडियो। वार्म वेलकम हो लेकिन गर्मी इतनी वार्म ना हो, जहां पर हमारी कोशिश है आपके लिए कुछ भी कोई भी मौसम हो लेकिन ऐसे गाने हो ताकि आपके दिल के मौसम गुम कर दे। बहुत ही म्यूजिकल। और चाहे आप घर पे है, बाहर है, कहीं से आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ग्रोसरी लिस्ट है आपकी, जॉब पे जा रहे हैं, जॉब से आ रहे हैं, एक्टिविटीज़ है किड्स की, बच्चों की, मंदिर से, मस्जिद से, चर्च से वापस आ रहे और हमें सुन रहे, देन बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड्स। कुछ हमारे लिसनर्स ऐसे भी हैं जो अक्सर घर पे याद करके अलार्म, बकायदा अलार्म रखकर हमें सुनते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह का और ईश्वर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस बात के लिए, आपकी लिसनरशिप के लिए। वेनेसा इवेंट्स को एक बार याद कर लेते हैं। आपके घर के छोटे या बड़े जो भी माइलस्टोन है, सेलिब्रेशंस है, इसी के लिए एक ही नाम है, दैट इज वेनेसा इवेंट्स। ग्रेजुएशन से लेके आपके हाउस वार्मिंग से लेके वेडिंग, जो भी आपकी पार्टीज है, एक ही नाम है, दैट इज वेनेसा इवेंट। एंड उनका नंबर जो है 4694428770। फोटोग्राफी से लेके, हॉस्पिटैलिटी से लेके, कैटरिंग, सारी जितने भी आपके मसले है, फिक्र है, वो उनको दे दीजिए। बस आपके मेमोरीज आप बनाइए एंड दैट इज वेनेसा इवेंट। हरी जी को आज ही कॉल कीजिएगा 4694428770। इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हैपनिंग बाय INT ऑन सैटरडे अगस्त 15th फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड। जरूर जाइएगा, इट इज इंडोर, जी हाँ, ताकि आपको कोई भी फिक्र ना हो गर्मी की या धूप की। इट इज इंडोर, कोमरिका सेंटर, फ्रिस्को, परेड है, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग एंड ऑल्सो फायरवर्क्स फिनाले, दैट इज INT आनंद बाजार ऑन 15th ऑफ अगस्त। चलते हैं हमारे म्यूजिक की तरफ, संगीत की तरफ। और जो गाने आप जानते हैं अमूमन हम इस सेगमेंट में लाते हैं, वो होते हैं गैर फिल्मी, प्राइवेट एल्बम से, वेब सीरीज की बातें, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बातें, गजल की बातें, एवरी संडे विथ मी योर होस्ट नीलम।

0: कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनका नाम एज अ बबल आ जाता है, राइट, कि हमें पहले सुनने में नहीं आता होता और बाद में उनके नाम पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं, वो कोक स्टूडियो में उनकी अपीयरेंस आ जाती है, फिल्मों में उनकी आवाज़ें सुन जाते हैं. सो आदित्य रिखारी इज सच ए नेम कि ऐसा लगता है कि रातों रात वो सुपरस्टार बन गए. अपने यूट्यूब पर ही अपने गाने अपलोड करते थे एंड ही स्टार्टेड गेटिंग मिलियन सब्सक्राइबर्स और हर जगह उनका नाम सुनने में आता है. बट द मेन पॉइंट इज ये देखने की बात होती है कि ये जो सिंगर्स नए नए आते हैं एंड दे हैव दिस मिलियन फॉलोअर्स, व्यूज उनको मिलते हैं, आर दे गोइंग टू सस्टेन दिस, आर दे गोइंग टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री आफ्टर इवन 5 ईयर्स. तो चलिए, अगर इंशाल्लाह मैं 5 साल के बाद यहाँ पे रही तो हम देखेंगे आदित्य रिखारी का गीत मैं आपको सुनवाती हूँ नहीं, बिल्कुल. लेकिन प्रार्थना या ईश्वर से दुआ यही है कि जब तक हम हैं तब तक हमारा साथ आपके साथ रेडियो पे रहे. रेडियो के साथ ही मैं, मुझे लगता है कि मेरा जन्म हुआ है माइक के साथ ही. तो उम्मीद बिल्कुल यही रहेगी कि जहाँ जहाँ है जान है तब तक रेडियो है. मैं हूँ नीलम आपके साथ, आज कुछ गैर फिल्मी गाने लाई हूँ आपके लिए एवरी संडे की तरह.
1: Babe, I'm manifesting.

दर्शन रावल की आवाज ना आवे सजना ऑन 104.9 एफएम फनेशिया रेडियो। नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज आ गई है, रोमांटिक ड्रामा सीरीज। जी हाँ, जो हमारी तरह है जिन्हें एक्शन थ्रिलर अच्छी नहीं लगती, वायलेंस अच्छा नहीं लगता, एंड इफ दे लाइक गुड इमोशनल ड्रामा, तो वेल आपके लिए अच्छी खबर है कि नई रोमांटिक ड्रामा सीरीज आ गई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी, जिसका नाम है मुसाफिर कैफे। और जो कहानी है वो बहुत ही सादगी भरी है। कहा जाता है कि ये जो एक बेस्ट सेलिंग हिंदी नॉवेल उपन्यास पर आधारित है, और उसका नाम है मुसाफिर कैफे, जिसमें विक्रांत मैसी है, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना। एंड दिस इज आउट एंड आउट रोमांटिक कहानी, रोमांटिक कॉमेडी कह दीजिए, या हल्की फुल्के प्यार की सादगी भरी कहानी है, तो ज़रूर देखिएगा। एंड यू नो व्हेन दे हैव लाइक मल्टीपल बहुत ज़्यादा वायलेंस की जब सीरीज होती है, जहाँ पर भी देखो, जहाँ पर भी ऑन करो, वहीं क्राइम, वहीं ड्रामा, वहीं यू नो वायलेंस की बातें, तब कहीं ना कहीं अच्छा लगता है जब ऐसी हल्की फुल्की बातें हो, प्यार की, मोहब्बत की, या इवन फैमिली ड्रामा लाइक गुल्लक सीजन 1 और 2, 3 अगर आपने देखी हो तो बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि चलिए एज ए से यू नो कि क्लाउड है, एवरी क्लाउड इज अ सिल्वर लाइनिंग, अच्छी कहानियाँ भी बनती है और कुछ क्लीन एंटरटेनमेंट भी होती है, बस हमारा काम है ढूंढना।

सतेंद्र सरताज जी, हाँ, उनकी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत ये प्यार की बातें आपने सुनी। बड़ी लंबी है कहानी मेरे प्यार दी। सतेंद्र सरताज और 104.9 FM फनेशा रेडियो। OTT प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, एंड इफ़ यू लाइक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में आपको पसंद आती है तो वेल, OTT पर एक सस्पेंस भरी एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म आ रही है, राव बहादुर। एक्चुअली वो बनी थी तेलुगु में, लेकिन आप उसे हिंदी में भी देख सकते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिलीज इन ऑल द लैंग्वेजेस ऑन नेटफ्लिक्स आई बिलीव। तो आप बिल्कुल OTT पे उसे कैच कर सकते हैं, जिसे बहुत अच्छी IMDb की रेटिंग मिली थी। इट वॉज अबाउट 8.7। इट्स अ थिएट्रिकल रिलीज, इट इज़ नॉट एन ओरिजिनल OTT रिलीज, लेकिन फिर भी अब OTT पे बिल्कुल आप वो फिल्म देख सकते हैं जिसका नाम है राव बहादुर, एंड एज आई सेड इट इज़ इन ऑल लैंग्वेजेस। कुछ ऐसे ही गैर फिल्मी बातें टिल 2 PM।

येलो डायरी जी नहीं, ये मेरी डायरी का कलर नहीं है. इट्स अ बैंड नेम. जिससे आपने ये गीत सुना था, येलो डायरी इज द नेम ऑफ अ बैंड जो इंडी रॉक म्यूजिक में बहुत बहुत पॉपुलर है. उनके बहुत सारे गाने होते हैं, उनके बहुत सारे एल्बम्स हैं और उनकी कॉन्सर्ट्स भी हुआ करती है. ऐसे बहुत सारे बैंड की जानकारी लाती हूँ आपके लिए. कुछ इंडी म्यूजिक, कुछ गजल की बातें, कुछ गैर फिल्मी बातें होती है हमारी और आपकी यहाँ पे एवरी संडे बिटवीन 1 and 2 PM एंड सैटरडे. जी हाँ, म्यूजिकल मुलाकातें होती है 12 से 3 के बीच में, जहाँ 12 से 2 के बीच में बॉलीवुड बेस्ड गाने होते हैं, थीम बेस्ड गाने. एंड 2 से 3 के बीच में हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं कम्युनिटी की बातें. जी हाँ, जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप विथ ऑल द नॉन प्रॉफिट इवेंट्स एक्टिविटीज की जानकारी. हमारे साथ जुड़ते हैं किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि. इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर दैट आवर ओनली एवरी सैटरडे. अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं, कभी भी आपने इस कार्यक्रम के लिए नहीं सुना था पहले, देन वेल दिस इज योर चांस. अगर आप किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, आपकी जो भी जानकारी है हम तक पहुंचाना चाहे, कम्युनिटी तक पहुंचाना चाहे, देन प्लीज डू रीच आउट टू अस neelam@phoenicia.net. एंड वंस अगेन, इट्स अ फ्री कम्युनिटी प्लेटफॉर्म एवरी सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM ऑन 104.9 FM Phoenicia रेडियो, होस्टेड बाय मी योर होस्ट नीलम. और अब चलते हैं आखिरी गाने की तरफ. बस बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर ऑल द लवली कॉल्स. आप ऐसे ही सुनते रहिएगा, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तभी हम आएंगे, है ना. जब तक आप सुनेंगे तब तक हम यहाँ पर आते रहेंगे ऑन 104.9 FM Phoenicia रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. लेती हूँ आप सभी से आज्ञा, इजाजत. मुलाकात होगी अगले शनिवार. तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड एंजॉयिंग Phoenicia रेडियो.

0: And with that, that is the end of our show today. Thank you so much for everyone who tuned in. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. I've been your RJ Rhea. Don't go anywhere. So much more fun yet to come. I'll be back next Sunday, same time, 2 p.m. to 3 p.m. I hope everyone has an amazing week and hopefully an amazing last week of summer. I love all of you guys. And again, happy National Friendship Day.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
5: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience. With CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
7: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम
8: इस साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
9: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
8: नहीं
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है
8: नहीं
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
8: वो भी नहीं
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG Fintax योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
10: Proudly supported by Roma Pithadia, Shri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
12: Register free now at meditation.funasia.net.
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
10: तो चल उन सेल्फी से पिज्जा खाते हैं।
15: व्हाट
12: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

लाल दुपट्टे वाली। जी हाँ, अब बारी है नॉनस्टॉप 90s की और आज हम आपको सुनवाएंगे 1993 में रिलीज होने वाली हिट फिल्मों के मोस्ट पॉपुलर गाने। जैसे कि ये गाना फिल्म आंखें से लिया गया था। बिलीव इट और नॉट, 1993 की ये हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी जिसमें गोविंदा, चंकी पांडे एज वेल एज राज बब्बर एंड कादिर खान ने लीड रोल अदा किया था। ये गाना जो आप सुन रहे थे कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में था। एंड आई बिलीव देयर वर टू न्यू एक्ट्रेसेस, काइंड ऑफ रिलेटिवली न्यू, दे डिडंट मेक इट दैट बिग, बट दे वर बोथ इन दिस मूवी। इफ यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। इट्स 14 मिनट्स पास्ट 3 ऑन द 2nd of August 2026 और दिल से प्रोग्राम के सेगमेंट नॉनस्टॉप 90s में आपका स्वागत है। आज के इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताबुन किया है अटर्नी ओमार ख्वाजा ने। आई नो एवरीबॉडी नोज हिज नेम, ही इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल एंड ट्रस्टेड नेम व्हेन इट कम्स टू इंजरी एक्सीडेंट रिलेटेड इश्यूज। यू नो, दूसरे कामों के लिए आप अलग अलग अटर्नीज के पास जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं देन रिमेंबर ओनली वन नेम एंड दैट्स अटर्नी ओमार ख्वाजा। यू कैन कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomar.com। रिमेंबर उनकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है एंड दे डोंट चार्ज यू एनीथिंग टिल यू विन योर किस। ऑलराइट, अब चलते हैं 1993 की सेकंड हाईएस्ट फिल्म के गाने की तरफ।

खलनायक ना सिर्फ 1993 की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी बल्कि 39th फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म को तकरीबन 11 नॉमिनेशंस मिली। इनफैक्ट अलका याग्निक को इस फिल्म के गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला और चोली के पीछे क्या है डांस के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का इनाम भी इसी फिल्म को मिला। इफ यू रिकॉल इस फिल्म में थे संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, राखी एज वेल एज अनुपम खेर। दैट वाज खलनायक। अगर आपको नहीं पता खलनायक का क्या मतलब होता है, इट मींस अ विलन, यानी कि कोई दुष्ट शख्स। ऑलराइट, अब लेट्स कंटिन्यू नॉनस्टॉप 90s, लेकर चलते हैं थर्ड हाईएस्ट फिल्म के गाने की तरफ आपको। एंड दिस इज अ मूवी व्हिच हैज एवरीवनस फेवरेट सुपरस्टार किंग खान।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना फ्रॉम द फिल्म डर अ वायलेंट लव स्टोरी। 1993 में ये फिल्म हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म के तीसरे पायदान पर थी एंड इट वाज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। शायद इसलिए लोगों ने इसे बहुत पसंद किया कि इसमें इट वाज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, यू नो देयर वाज अ ग्रेट स्टोरी एंड देयर वाज थ्रिल, देयर वाज एक्शन, देयर वाज रोमांस। इट प्रीटी मच हैड एवरीथिंग दैट पीपल लाइक टू सी इन अ बॉलीवुड मूवी एंड ऑफ कोर्स इट वाज स्टारिंग सनी देओल, जूही चावला एंड शाहरुख खान in the main lead. I hope you all enjoyed this song non-stop 90s mein. Aaj hum 1993 ki highest grossing films ke gaane aapko sunwa rahe hain and I know ke har film mein bahut sare gaane hote hain. Main aise gaane select kar rahi hu jo mujhe lag raha hai ki aapko pasand aayenge. Aaiye chalte hain agle gaane ki taraf. 1993, a great year for King Khan. This next song is also from one of his movies.

बाजीगर, जिसमें बाजीगर थे शाहरुख खान और उनके साथ थी काजोल. इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी भी थी. एंड दिस वॉज बिलीव इट नॉट अनदर साइकोलॉजिकल थ्रिलर. आई गेस 90s में लोगों को साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स बहुत पसंद आ गए थे. आई थिंक आई एक्चुअली बिलीव दैट द ऑडियंस बिकेम अ लॉट स्मार्टर एंड दे जस्ट डिडन्ट वांट जस्ट अ लव स्टोरी और समथिंग या टिपिकल एक गाँव की यू नो छोरी एंड शहर का लड़का टाइप्स ऑफ स्टोरीज. दे वॉन्टेड समथिंग दैट हैड मोर वेट, मोर डेप्थ, एंड हेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स बिकेम पॉपुलर इन द 90s. 39th फिल्म फेयर अवार्ड में बाजीगर को 10 नॉमिनेशंस मिले. इनफैक्ट दे वॉन 4 ऑफ देम. और इसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला अन्नू मलिक को. एंड ऑफकोर्स शाहरुख खान को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड फॉर दिस फिल्म.

0: Now, Damini movie, in fact, was a little different from the typical love stories, yeah, gangster movie, yeah, psychological thriller. It was actually a legal drama film, and how the legal issues in the movie impacted the marital relations between the hero and the heroine, and that was Rishi Kapoor and kya naam hai apni Meenakshi Seshadri lead role mein the, aur is film mein Sunny Deol bhi the. Well, Nonstop 90s will continue after the break, so don't go anywhere.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
1: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
2: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
3: Samasya ka pakka samadhan.
2: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: इस रक्षाबंधन चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
1: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं.
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
7: वेट, इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो.
9: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
9: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
12: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
13: ये तारा वो तारा हर तारा.
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
14: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
10: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है, या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
15: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली, और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
1: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन.
16: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
1: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
16: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
0: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. 34 मिनट्स पास 3 ऑन द 2nd of August 2026 संडे आफ्टरनून मेरे साथ बिता रहे हैं आप. आपकी बेहद मशकूर हूँ. एंड आज हमारा सेगमेंट चल रहा है नॉन स्टॉप 90s. बारी है 1993 की. सो हमने सेलेक्ट की है हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स और उनके बेहतरीन गाने. एंड आई होप कि मेरी पसंद आपकी भी पसंद है. आज के इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए वी हैव हेल्प फ्रॉम एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यूएस. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. सो कॉल करें 4699429888 और विजिट agfintechs.com. All right, so, जो पिछला गाना था दामिनी फिल्म से लिया गया था. अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इट्स फ्रॉम द मूवी गुमराह, स्टारिंग श्रीदेवी एंड संजय दत्त.

मैं तेरा आशिक हूँ, सुन रहे थे आप रूप कुमार राठौर की आवाज में। गुमराह फिल्म से लिया गया ये गाना। गुमराह फिल्म डायरेक्ट की थी महेश भाट ने, और जैसे कि आप जानते हैं ही इज इनटू क्राइम टाइप मूवीज एंड हॉरर मूवीज एंड स्टफ, सो दिस वन वाज आल्सो एन एक्शन क्राइम ड्रामा। इंटरेस्टिंगली इनफ दिस वॉज लूसली बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज बैंकॉक हिल्टन। उन्होंने इसके पे थोड़ी बहुत उसकी जो कहानी थी वो बेस्ड थी, और हांगकॉन्ग में काफ़ी इसकी शूटिंग हुई थी। इनफैक्ट इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, विन नहीं किया उन्होंने, बट उन्हें नॉमिनेट जरूर किया गया था फॉर द 39th फिल्म फेयर अवार्ड्स। इट इज नाउ 3:39 एंड यू आर लिसनिंग टू दिल से। मौसम आज भी गर्म है, जैसे कल था, वल गर्मियां हैं तो गर्म ही होगा ना। 93 degrees Fahrenheit इज द करंट टेम्परेचर। द गुड न्यूज इज दिस इज द हाइएस्ट, सो अब इससे ज्यादा और गर्मी नहीं होगी। 93 इज द हाइएस्ट, और बस हो गया, अब और गर्म नहीं होगा। इट्स एक्चुअली गोना कम डाउन अ लिटल बिट। टुडेज लो वाज 72 एंड टुमारो दो इट्स गोना बी अ लिटल बिट।

हाईएस्ट. तो अब इससे ज्यादा और गर्मी नहीं होगी. 93 इज द हाईएस्ट और बस हो गया. अब और गर्म नहीं होगा. इट्स एक्चुअली गोना कम डाउन अ लिटिल बिट. टुडे इज लो वाज 72 एंड टुमारो दो इट्स गोना बी अ लिटिल बिट वार्मर. सो गेट रेडी फॉर हॉट मंडे. हाई ऑफ 97 एंड अ लो ऑफ 74 डिग्रीज फारेनहाइट.

अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म हम हैं राही प्यार के, विच वॉज अ कोलैबोरेटिव ऑफर एफर्ट बिटवीन महेश भट्ट, रॉबिन भट्ट एंड आमिर खान. जी हाँ, स्क्रीन प्ले लिखने में आमिर खान का भी बहुत सारा इनपुट था. इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिल्म ओरिजिनल कहानी नहीं थी बल्कि 1958 में एक हॉलीवुड मूवी थी हाउस बोट के नाम से. तो फिर बॉलीवुड में इसे बना दिया गया हम है राही प्यार के, ऑफकोर्स विद अ रोमांटिक कॉमिकल ट्विस्ट. इस फिल्म के लिए जूही चावला को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एट द 39th फिल्म फेयर अवार्ड. इनफैक्ट इसी फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला एंड बाद में इसी फिल्म को क्या कहते हैं अपना तेलुगु में भी बनाया गया एंड फिर मलयालम में भी ये बनी. सो इतनी हिट गई कि कई भाषाओं में इस फिल्म को बनाया गया बाद में. एनीवे आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस सॉन्ग एंड यू आर एंजॉयिंग नॉनस्टॉप 90s, जिसमें आज हम शोकेस कर रहे हैं 1993 की हिट फिल्मों के गाने.

उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप 1993 की हिट फिल्म अनाड़ी से लिया गया ये गाना। ये फिल्म इट वाज एक्चुअली अ रीमेक एंड नॉट ऑफ वन फिल्म बट टू मूवीज। 1991 में एक तमिल फिल्म आई थी चिन्ना तंबी और तेलुगु में भी इसका रीमेक था चांति के नाम से एंड दैट केम आउट इन 1992। सो पहले 1991 की तमिल मूवी को इतना पसंद किया गया कि उसका तेलुगु में रीमेक बना और फिर बनी हिंदी लैंग्वेज में फिल्म अनाड़ी जिसमें वेंकटेश और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे। दिस वाज अ रोमांटिक ड्रामा फिल्म। लोगों ने कहानी को भी पसंद किया एंड ऑफकोर्स ये गाना भी बहुत बढ़िया था। आइए नॉन स्टॉप 90s कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अगले गीत की तरफ। ऑल्सो वन ऑफ द टॉप 10 मूवीज ऑफ 1993।

कुमार सानू की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना। दूसरी आवाज थी साधना सरगम की। 1993 की ये 6th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी। एक्शन रिवेंज ड्रामा था जिसमें परेश रावल, गुलशन ग्रोवर और प्रेम चोपड़ा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था।

लता मंगेशकर और जॉली मुखर्जी की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना, जो कि जूही चावला और जैकी श्रॉफ पर पिक्चराइज किया गया था फॉर द फिल्म आईना, विच वॉज एक्चुअली अ रीमेक ऑफ अ तेलुगु मूवी. इस फिल्म के लिए अमृता सिंह की नेगेटिव एक्टिंग को, एज ए नेगेटिव रोल में जो एक्टिंग उन्होंने की थी, उसे बेहद पसंद किया गया था. दिस वॉज ए रोमांटिक ड्रामा फिल्म, ग्रेट स्टोरी अबाउट लव एंड सैक्रिफाइस. You're listening to Nonstop 90s, जिसमें आज हम फीचर कर रहे हैं 1993 की हिट फिल्मों के गाने. And this happens to be one of them from the movie Dalal.

1993 में रिलीज होने वाली ये फिल्म यानी कि दलाल एक बायलिंगुअल एक्शन फिल्म थी जो कि साइमल्टेनियसली बांग्ला और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज की गई थी। इस फिल्म में लीड रोल था मिथुन चक्रवर्ती, आयशा झुलका और राज बब्बर का। Personally, I think there was a lot of age difference between Mithun ji and Aisha, and as such, hero heroine ka, I don't know, but you know what, producers or directors ko zyada pata hota hai, isiliye ye film hit gayi thi, kahani ko pasand kiya logon ne, inki acting ko bhi pasand kiya, aur saath mein inke saath the Tinu Anand, Shakti Kapoor, Ravi Bedi as well as Satyan Kapoor, and this was the 8th highest grossing film of 1993. अब रैप अप करते हैं हमारा नॉनस्टॉप 90s और लेकर चलते हैं एक ऐसे गाने की तरफ आपको जो कि फिल्म हिट नहीं थी पर डेफिनेटली इट मेड इट्स मार्क। आइए सुनते हैं सर फिल्म का ये गाना।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
7: ओह हाँ, ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
8: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
9: Register free now at meditation.funasia.net.
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
8: हु आर द एम्प्लॉइज योर कंपनी सिंपली कैनॉट afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
12: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
8: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
18: खुश आमदीद कहती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात एंड आई बी विद यू टिल 6 PM। इट इज 4:05 ऑन दिस 2nd of August 2026। इट इज ए सुपर संडे आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहां भी हैं खैरियत से हैं। सो हमारा लास्ट सेगमेंट था नॉनस्टॉप 90s। अब हमारा जो सेगमेंट हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द। इट्स पॉसिबल दैट यू नो व्हाट दिस इज अबाउट, इफ नॉट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। शब्द सेगमेंट में हम सिलेक्ट करते हैं कोई एक वर्ड, कोई एक लफ्ज, कोई एक शब्द, और फिर जितने भी गाने होते हैं उनके मुखड़े में आपको वो वर्ड सुनाई देगा। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, लेट्स से वर्ड है जान, तो जितने भी गाने होंगे उसमें वर्ड जान जरूर होगा। अब here's the thing, मैं शुरुआत करती हूँ हमेशा पुराने गानों से और ऐसा ऐसा आगे की तरफ बढ़ती हूँ। हो सकता है कि शब्द सुनने के बाद आपको कोई गाना याद आए, बट मेक श्योर दैट इट इज समथिंग दैट्स न्यूअर देन द सॉन्ग दैट आई एम प्लेइंग, बिकॉज एज आई मेंशन्ड अर्लियर आई कीप मूविंग फॉरवर्ड। शुरुआत करते हैं 60s से, 70s, 80s, 90s, 2000, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये है हमारे इस शो का फॉर्मेट। अब आपको मौका दिया जा रहा है इनाम जीतने का। इनाम किस बात का, क्यों? वेल, आप पहला गाना सुनिए और गेस करने की कोशिश कीजिए कि आज का वर्ड, आज का लफ्ज, आज का शब्द क्या है, और वो वर्ड आपको पहली 2-3 लाइनों में ही यानी कि गाने के बोल, गाने के मुखड़े में ही मिल जाएगा। गौर से सुनिए, गेस करने की कोशिश कीजिए और फिर जीतिए सैन इडली रेस्टोरेंट से मजेदार डोसा और साथ में गर्मा गर्म फिल्टर कॉफी। जैसा कि आप जानते हैं सैन इडली रेस्टोरेंट इज 100% शुद्ध शाकाहारी यानी कि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, जहां आपको मिलेंगे हर तरह के आई वुड से ऑथेंटिक डिलिशियस साउथ इंडियन डिशेस, इडलीज, डोसाज, मतलब जो भी आपको चाहिए, एंड ऑफकोर्स साथ में शहर की सबसे बेस्ट फिल्टर कॉफी। सो मौका है आपके पास ये इंजॉय करने का बिल्कुल मुफ्त यानी के फ्री। बाय द वे दे आल्सो ऑफर फैमिली डिनर्स एंड केटरिंग सर्विसेज और जैन फ्रेंडली ऑप्शंस भी हैं उनके पास। दे आर लोकेटेड राइट ऑफ 121 एंड कस्टर इन फ्रिस्को। ओके, सब कुछ सुन लिया आपने, सब कुछ जान लिया। अब मैं गाना प्ले करूंगी, उसे सुनिए। द फर्स्ट पर्सन टू कॉल एंड गेस द राइट वर्ड will win the prize, provided उन्होंने सैन इडली रेस्टोरेंट से पहले कुछ नहीं जीता, because अगर आप पहले जीत चुके हैं तो आप automatically disqualify कर दिए जाएंगे। मेरी तरफ से नहीं, मैं तो आपका नाम भिजवा दूंगी, लेकिन जब आप वहां जाएंगे और अगर उनकी लिस्ट में आपका नाम पहले था और वो आपको पहले गिव अवे दे चुके हैं तो वो आपको कहेंगे टाटा बाय बाय। सो लेट्स नॉट डू दैट, डोंट इवन अटेम्प्ट इट इफ यू नो यू बीन टू सैन इडली रेस्टोरेंट बिफोर टू गेट दैट फ्री गिफ्ट। ओके, तो चलिए, एंड आई एम व्हाट आई एम गोना डू इज आई विल डू वन मोर थिंग। आई विल गिव इट टू टू पीपल, सो द फर्स्ट टू करेक्ट आंसर्स विल गेट दिस प्राइज। ओके, डन हो गया। अच्छा, दूसरी बात, आप एक बार कॉल करके एक वर्ड मुझे बताते हैं। लेट्स से जो भी गाना है, लेट्स से गाना था बाजीगर, ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। ओके, और वर्ड था जादूगर। पहली बार जब आपने फोन किया, आपने बोला ओ वर्ड है बाजीगर, और मैं आपसे कहती हूँ नहीं, आप फिर दोबारा भी कॉल करके ट्राई कर सकते हैं और आपका ये नहीं वर्ड है जादूगर, तो देन यू कैन स्टिल विन। सो यू कैन कॉल एज मेनी टाइम्स एज यू वांट टिल यू गेस द करेक्ट वर्ड, प्रोवाइडेड कि मुझे ऑलरेडी मिल नहीं चुका। ओके, काफी लंबा इंट्रो हो गया, चलिए अब आपको सुनाते हैं गाना, एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द 60s। 9722355555 स्टूडियो का नंबर है, 9722355555। गेस कीजिए और इनाम जीतिए।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना जो कि आशा पारेख और सुनील दत्त पर पिक्चराइज किया गया था। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट संचिता एंड शशि, बोथ द लेडीज वर द फर्स्ट टू कॉल विद द करेक्ट वर्ड। आज का शब्द है बादल। बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने और इसीलिए जीता इनाम फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट। तो अब जब ये क्लियर हो चुका है कि आज का वर्ड, आज का लफ्ज क्या है, लेट्स कंटिन्यू दिस सेगमेंट। नाउ आई फाउंड अनदर वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द 60s, सो आइए वो भी सुन लेते हैं।

दीवाना हुआ बादल, शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर पिक्चराइज किया गया ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। एक बार फिर आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट संचिता एंड शशि, दोनों ने ही बिल्कुल सही गेस किया एंड दे कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर माय अनाउंसमेंट एंड गेस द वर्ड बादल जो कि सही जवाब था। एंड आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ कॉल्स। लगता है कि जब मैंने पहली बार अनाउंस किए थे विनर्स के नाम, उन्होंने नहीं सुना। सो आई वॉन्ट टू वंस अगेन लेट यू गाइज नो दैट वी हैव फाउंड आवर टू विनर्स, सो नॉट टेकिंग एनी मोर कॉल्स ऑन द गेसिंग पार्ट। अब आइए सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं। आज के शब्द सेगमेंट पे वर्ड है बादल एंड वी आर गोना मूव ऑन टू 70s।

बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही हसीन और ये स्वीट सा गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप. विच वॉज आई एम नॉट श्योर, आई कैन रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी. एनीवे, इट डज हैव द वर्ड बादल इन इट, इसीलिए शब्द सेगमेंट का हिस्सा बना 1970s में रिलीज हुई फिल्म का ये गाना. आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ. नाउ दिस वन्स आल्सो फ्रॉम द 70s.

लता जी की आवाज में हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म दिल लगी से लिया गया था। इफ यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन, यू आर लिसनिंग टू दिल से एंड आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात। आज का शब्द, आज का वर्ड, आज का लफ्ज है बादल और उसी से रिलेटेड गाने हम आपको सुनवा रहे हैं। अब बारी है 80s की।

सनी देओल और अमृता सिंह पर पिक्चराइज किया गया ये गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में सुन रहे थे आप, साथ में शब्बीर कुमार भी थे. एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस सॉन्ग. नाउ हियर इज अनदर सॉन्ग फ्रॉम द 80s जो मुझे बहुत पसंद है.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hai. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज हैं यार।
5: तो चल, उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
4: What?
6: This Friendship Day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen, and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
9: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
10: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए?
11: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
1: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे। What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
12: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
13: Welcome back to Dil Se on 104.9 FM Funasia Radio, bringing the community together. Main hoon aapki host, aapki dost Tamreen Hasnat, and I will be with you till 6 p.m. I hope you guys are doing well wherever it is that you are and enjoying our music collection, which is brought to you in part by Passion Health Primary Care. जी हाँ, here is a clinic that's going to make sure that अगर आपकी appointment 30 minutes की है तो वो पूरे 30 minutes आपको दे. Because they want to understand whatever is your situation and take care of your health. You're not just a patient, you are family. So अपनी पूरी family को जो भी हैं आप उनको लेकर Passion Health Primary Care जा सकते हैं. Because 30 minutes में, you know, they can take care of your annual physical. आपको अगर anxiety care के बारे में बात करनी है, fibro scan करवाना है, alcohol related liver problems, vitamin B12 deficiency testing, मतलब कुछ भी हो सकता है, right? Whatever help you need, they're going to make sure they take care of you. Schedule your appointment today, 214-666-6259. That's Passion Health Primary Care. Your health is their passion. इस वक्त आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है सेगमेंट शब्द का, जिसमें कोई एक वर्ड, कोई एक लफ्ज चुनकर हम आपको सुनवाते हैं बेशुमार गाने, कुछ नए कुछ पुराने. आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 90s तक पहुंच गए हैं. आइए सुनते हैं सड़क फिल्म का ये गीत.

और ये गर्मी बढ़ती जाएगी. अभी तो इट्स 93 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, लेकिन टुमारो ब्रेस योरसेल्फ फॉर ए हॉट 97 डिग्रीज फ़ारेनहाइट फॉर अ हाई एंड 74 फॉर अ लो. इफ यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन, आप सुन रहे हैं हमारे शब्द का सेगमेंट. आज का शब्द, आज का वर्ड है बादल, और इसीलिए बादल से रिलेटेड गाने हम आपको सुनवा रहे हैं. अब चलते हैं 1993 में रिलीज हुई फिल्म के एक गाने की तरफ. आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस सॉन्ग एज वेल. हाँ, अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर दिया करें, बताया करें प्रोग्राम में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, बिकॉज दैट्स द ओनली वे फॉर अस टू डू बेटर देन वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ. 972-235-5555 है हमारे स्टूडियो का नंबर.

अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना, जो कि आयशा झुलका और अजय देवगन पर पिक्चराइज किया गया था फॉर द फिल्म संग्राम।

कभी जो बादल बरसे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना. बिफोर आई मूव ऑन टू, आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली गोना बी आवर लास्ट सॉन्ग, मे बी, लेट्स सी. दिस वन इज फ्रॉम द मूवी अखीर, आपको याद होगी सोनाक्षी सिन्हा थी इस फिल्म में.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
8: अरे वो केक आया क्या?
9: डीजे कौन हैंडल करेगा?
8: डिकॉर्ड वाले को कॉल किया.
9: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया.
8: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया.
9: ऑसम इवेंट्स?
8: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड अ टीम विल हैंडल एवरीथिंग.
9: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म.
8: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ.
10: कॉल नाउ एट 214-725-7466. That's 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
11: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
12: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. Honestly, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स what योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
10: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इन टू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 McKinney.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
17: Hello, Texas Parivar. क्या आपको पता है, there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for conforming loans that helps you to get better rates by almost 0.5 to 1%. So call कीजिए Kamna को at 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641. This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
18: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
17: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
19: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, और प्रोग्राम का नाम है दिल से, एंड इट कम्स ऑन एयर एवरी सैटरडे एंड संडे. सैटरडेज को फ्रॉम 3:30 टू 6 और संडेज को फ्रॉम 3 टू 6 PM. मेरी कोशिश होती है कि हर घंटे पर एक अलग सेगमेंट हो, कोई एक नया रंग हो, कोई एक नया सेगमेंट हो, ताकि आप फुली एंटरटेन्ड फील करें. नाउ दैट इज माई गोल एंड आई होप आई एम बीइंग सक्सेसफुल. मेरी कोशिश होती है कि बातें कम करूं और गाने ज़्यादा प्ले करूं, बट इट्स वॉट एवर यू गाइज लाइक. सो कोशिश मेरी ये होती है कि जो भी बातें हों वो हमारी म्यूजिक फोकस्ड हों. इट इज़ 6:05 ऑन द 2nd ऑफ ऑगस्ट 2026 एंड इट्स ए स्प्लेंडेड संडे evening. This part of our show brought to you by PMJ Jewels. Well, they now have a store in Frisco. Of course, they're from India and they have been in this industry for 60 years. Can you imagine that? Aur ab unka store Frisco mein khul chuka hai. To aap ko agar achhi khoobsurat jewelry chahiye, wo bhi aisi jo ki generation se log jis naam par bharosa karte ho, PMJ Jewels jaisi dukaan, आप जरूर जाइए उनके शोरूम में. इट्स लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. दैट इज PMJ Jewels. डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी. सो पिछले संडे की तरह आज भी हम आपके लिए सेगमेंट लेकर आए हैं बॉर्डर पार से, जिसमें हम आपको ऐसे गाने सुनवा रहे हैं एज इन द ओरिजिनल सॉन्ग्स विच वर मेड इन पाकिस्तान एंड देन उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और आ गए बॉलीवुड में, और आप इंजॉय करेंगे दोनों स्टाइल्स ऑफ द सेम सॉन्ग. यानी कि जब बॉर्डर्स क्रॉस किया जाता है तब थोड़ा रंग रूप चेंज होता है. तो आइए सुनते हैं अब ये ओरिजिनल सॉन्ग फ्रॉम पाकिस्तान.

पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म फिल्म चन्न ते सूरमा का ये गाना नूर जहां जी की आवाज में आप सुन रहे थे एंड इट्स पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट बॉर्डर पार से। फिर जनाब ये गाना गया बॉर्डर के उस पार और रूप चेंज करके, रूप बदल कर आया कुछ यूं।

श्रेया घोषाल की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना जिस पर डांस परफॉर्मेंस थी नौरा फातेही की। यू आर लिस्निंग टू बॉर्डर पार से। आइए सुनते हैं नुसरत फतेह अली खान का ये ओरिजिनल साउंडट्रैक।

कई सालों पहले नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने ये गाना रिकॉर्ड कराया था और फिर बॉर्डर पार तक जब ये गाना पहुंचा तो एक नया रूप लेकर कुछ साल पहले यूं लौटा।

सत्य में विजय थे चू से लिया गया ये गाना आप सुन रहे थे. इट वॉज जुबिन नौटियाल और नीति मोहन जिनकी आवाज़ें थी और ये गाना जॉन अब्राहम पर पिक्चराइज किया गया था. 19 मिनट्स पास्ट 5 सुन रहे हैं आप सेगमेंट बॉर्डर पार से जिसमें हम आपको ऐसे गाने सुनवा रहे हैं जो कि ओरिजिनली पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए गए थे एंड देन दे वेंट अक्रॉस द बॉर्डर एंड चेंज their look, I guess, and in this case, the sound, right? तो अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं क्वालिटीज इतनी अच्छी नहीं है बट इट विल एट लीस्ट टेल यू कि ओरिजिनल गाना क्या था. 1992 में मशहूर कमीडियन उमर शरीफ एक फिल्म के हीरो थे और इस फिल्म में ये गाना उन्होंने खुद गाया था और ये उन्हीं पर पिक्चराइज किया गया था. सो लेट्स एन्जॉय. फिल्म का नाम था मिस्टर चार्ली.

बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, मिस्टर चार्ली फिल्म से लिया गया ये गाना। आपने उमर शरीफ की आवाज में सुना और वो उन्होंने ही गाया भी था, आई मीन एज इन पिक्चराइज भी उन्हीं पे किया गया था। मिस्टर चार्ली के थे वो हीरो। और अब आइए सुनते हैं दिस सॉन्ग दैट ब्रोक ऑल द बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। जी हाँ, दबंग फिल्म का गाना।

मलाइका अरोरा पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म दबंग से लिया गया था. इसमें सलमान खान भी थे एंड आई नो दिस मेड द सिंगर सुपर डुपर फेमस. 24 मिनट्स पास्ट 5, यू आर लिसनिंग टू दिल से. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. और अब चलते हैं शौकत अली साहब का गाया हुआ ये गाना सुनते हैं, विच इज़ वेरी वेरी ओल्ड बट स्टिल अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. एंड देन विल हियर द बॉलीवुड रेंडिशन ऑफ द सेम सॉन्ग.

0: अनीर श्रीधर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना विच वॉज इन द फिल्म लव आजकल और सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण पर पिक्चराइज किया गया था। बॉर्डर पार से सेगमेंट विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक।
1: मोमेंट्स डोंट फेड, दे एको लाइक अ मेलोडी दैट नेवर लीव्स यू एंड इन दोस मोमेंट्स व्हाट यू वेयर बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट मेलोडी। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डेलिस। पीएमजे ज्वेलर्स, timeless craftsmanship, unmatched elegance and stunning bridal collections, now in Main Street Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: इस रक्षाबंधन चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
4: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
5: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं।
4: व्हाट,
6: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
7: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
2: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
7: Register free now at meditation.funasia.net.
8: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
9: सुनो कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
9: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान। एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM. ये मैंने तीन बार थैंक यू इसलिए बोला बिकॉज अब हर किसी के पास एक्सेस है म्यूजिक का, अपने फेवरेट गाने सुनने का. आप चाहें तो किसी भी तरह, किसी भी डिवाइस पे, किसी भी ऐप के जरिए अपने फेवरेट गाने सुन सकते हैं. लेकिन इसके बावजूद यू हैव चोजन टू ट्यून इन टू रेडियो, टू लिसन टू फनेशर रेडियो. सो वी ट्रूली अप्रिशिएट इट एंड आई एम सो ग्लैड कि आप हमारा ये शो सुन रहे हैं. आज के इस प्रोग्राम का नाम है दिल से. वेल, जो कल हुआ था वो भी दिल से था, आज वाला भी दिल से है. और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनान. हमारी आपसे मुलाकात होती है हर सैटरडे और संडे को बिटवीन 3 and 6 PM. It is now 34 minutes past 5 on the 2nd of August 2026. It's a Sunday evening and I hope कि अच्छा गुजर रहा है आपका दिन. This part of our show is brought to you by Hoco. Now, Hoco is a name that is very well known in India. The best part is it's now in North Texas. That's right. If you've been craving their legendary chana puri sandwiches, curries, या फिर वो जो Hoco की special cold coco है, you know, लोगों को बहुत पसंद है, लोग addicted हैं. Well, now you don't have to be like, oh, जब अगली बार हम इंडिया जाएंगे तो Hoco जरूर जाएंगे. You know what? इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. You can just go to 2693 Preston Road in Frisco and get that Hoco cold coco and experience the authentic flavors that have made it one of India's most loved food brands. You want to get the details? Just visit the website hoco.us. इस वक्त आपके लिए सेगमेंट पेश किया जा रहा है बॉर्डर पार से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं गाने जो कि ओरिजिनली पाकिस्तान में बने थे और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके जब वो इंडिया गए तो एक नए रूप, एक नए रंग के साथ आए. अब आइए सुनते हैं पाकिस्तान का ये एक ओरिजिनल गाना जो कि नाजिया हसन की आवाज में है.

अर्ली 80s में रिकॉर्ड किया गया ये गाना नाजी हसन की आवाज में सुन रहे थे आप एज पार्ट ऑफ आर सेगमेंट बॉर्डर पार से, बिकॉज इवेंचुअली ये गाना जब पहुंचा हिंदुस्तान तो बन गया कुछ यूं।

That was Disco Diwane from the film Student of the Year. ये गाना आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन पर पिक्चराइज किया गया था और आवाज थी सुनीति चौहान की. You're listening to Border Par से, a special segment on Dil Se.

केना सोना तेनु रब ने बनाया नुस। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में सुन रहे थे आप ये ओरिजिनल वर्जन फ्रॉम पाकिस्तान। और जब ये पहुंचा बॉर्डर पार तो और भी खूबसूरत हो गया।

कुंडी ना खड़का नसीबो लाल की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना. एंड आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, आई एक्चुअली लव दिस वर्जन फ्रॉम बॉलीवुड.

अब राहुल हक की आवाज में सुन रहे थे आप उनका ये सुपर हिट गाना नच पंजाबन, विच वॉज रीमेड बाय बॉलीवुड फॉर द मूवी जुग जुग जियो।

0: That was Nach Punjaban and Nach Chitra Ji. I'm so sorry. आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट की थी, इनफैक्ट आपने वो गाना मुझे डेडिकेट किया था, सेगमेंट के होने की वजह से मैं वो गाना नहीं प्ले कर पाई. बट आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई लव यू टू, एंड इट्स सो स्वीट ऑफ यू टू वॉन्ट टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू मी. बस आप समझे, आपने कहा और आपका वो प्यार मेरे दिल तक पहुँच गया. Thank you so much for giving me so much love. All right, folks, that wraps up Dil Se for this weekend. I will see you again, or you will hear me again, next Saturday, same place, same time, yani ke right here on 104.9 FM between 3 and 6 PM. Tab tak aap log apna khayal rakhein, apne aas paas jo log hain unka bhi khayal rakhein, aur mujhe apni duaon mein yaad rakhein, zyada zyada duaein kare. If you like me, that's all I want from you, to just keep me in your good prayers. Thank you so much. Signing off, this is Abreen Hasnat.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky, as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
11: तो चल उन सेल्फी से पिज्जास खाते हैं.
12: व्हाट,
13: दिस फ्रेंडशिप डे, ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन. पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: इन टुडेज बिजी वर्ल्ड, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रूली पॉज्ड एंड लिसन टू योरसेल्फ? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.

दोस्ती पक्की हो तो कलेश होना भी जरूरी है। दोस्ती पक्की हो तो कलेश होना भी जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो दोस्ती ही क्या जिसमें बवाल ना हो। इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन, फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आपके इस सुरीले सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा। स्वागत करती हूँ इस खूबसूरत सी संडे की शाम में आप सभी का। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फॉगी, गर्मी वाली कैसी भी हो, हमें तो अच्छी लगती है बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल। गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। और दोस्तों आज है August 2nd, 2026, इट इज फ्रेंडशिप्स डे। सो विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो चलिए इसी फ्रेंडशिप डे को मनाते हुए हम हमारे शो की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये पहला गाना।

शोले मूवी का दोस्तों दोस्ती पर का ये आइकॉनिक गाना सुन रहे थे आप। पुराने गाने में तो नए म्यूजिक का तड़का लगता है, तो गाना ऐसे ही निकल के बाहर आता है और इसी को आज के जमाने में हम रीमिक्स कहते हैं। जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है उनको बता देती हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपके होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। आज के हमारे इस शो में हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहला गाना तो दोस्ती भरा दोस्ती का सुन लिया, बट उसके बाद भी बहुत ही अच्छे अच्छे गाने आप सभी को सुनवाऊंगी और बहुत ही अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग सा एंटरटेनिंग सेगमेंट आपके लिए लेकर आऊंगी। तो प्लीज प्लीज सुनना ना भूलिएगा मुझे ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है दोस्तों आपका और मेरा साथ, आप भी जुड़े रहते हैं हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555। चलिए उसी के साथ आपको लेकर चलती हूँ अगले गाने की तरफ और उसके बाद फन सेगमेंट के बारे में आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगी।

बहुत ही खूबसूरत गाना है दोस्तों, दोस्ती पर का ये, और आई एम श्योर आप सभी ने एंजॉय किया होगा। अक्षय कुमार और बॉबी देओल पे पिक्चराइज था उदित नारायण और सोनू निगम की आवाज में। अगला गाना आप सभी को सुनवाऊंगी दोस्तों, उससे पहले बता दूं दैट योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज। सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इनटू रियलिटी विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। इट इज लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स। देयर एक्सपीरियंस्ड टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस टेलर्ड टू योर नीड्स, वेदर यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम, अपग्रेडिंग और रीफाइनेंसिंग। Start your home ownership journey with confidence today. You can call them. The number to call is 972-245-5626 or you can visit their website which is dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. दोस्तों इस गाने के बाद आने वाला है छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लेकर आने वाली हूँ आपके लिए एक बहुत ही फन और एंटरटेनिंग सेगमेंट। कीप लिसनिंग टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। दिस इज योर होस्ट आर्य पूर्वा।

0: तू कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
5: डीकन का प्लान अभी तक नहीं बना, बस 90 मिनट north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। Choctaw Casino and Resort, Durant, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game.
6: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
7: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
8: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
7: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
8: और एंटरटेनमेंट,
7: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
8: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
7: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
4: एक्सपीरियंस पीस, म्यूजिक एंड मेडिटेशन विद अर्चना दीदी एट अ फ्री 3-day रिट्रीट इन DFW. जॉइन अस ऑन ऑगस्ट 7th एट भारतीय निवास इन रिचर्डसन, ऑगस्ट 8th एंड 9th मॉर्निंग एट श्री रघुनाथ टेम्पल इन प्लेनो, एंड ऑगस्ट 8th इवनिंग एट DFW हिंदू टेम्पल एकता मंदिर इन अर्विंग। एंजॉय मेडिटेशन, सोलफुल म्यूजिक एंड फ्री वेजिटेरियन प्रसाद।
2: प्राउडली सपोर्टेड बाय रोमा पिठादिया, श्री विमल, शंकर विलास, पायल डांस क्लास, राजुलास किचन, फन पिज्जा किचन, रघुनाथ Temple, DFW Temple and Fun Asia.
4: Register free now at meditation.funasia.net.
9: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है, या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
10: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
2: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
11: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी,
12: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
13: कितने आदमी थे?
14: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। अगस्त का फर्स्ट संडे दोस्तों इज सेलिब्रेटेड एज दी फ्रेंडशिप डे। तो इसी फ्रेंडशिप डे को मनाते हुए हमने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने सुने दोस्तों पर के, और इसी दोस्तों पर के डे को सेलिब्रेट करते हुए मैं आगे का सेगमेंट हमारा आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मैं आपको कुछ अमेजिंग फिल्मों में से कुछ डायलॉग सुनाऊंगी जो कि फिल्म दोस्ती पे बेस्ड है, पिक्चराइज्ड है हमारे बॉलीवुड में। ऐसे गाने आप सभी को डायलॉग्स उस मूवी के आप्स को सुनवाऊंगी। आपको बस क्या करना है कि सिंपल से वो डायलॉग्स कौन से मूवी के है वो पहचाना है। उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, 9722355555 हमारा स्टूडियो का नंबर है। जल्दी से जल्दी अपनी स्पीड डायल पे रख दीजिए। बहुत ही सिंपल से इजी पीजी डायलॉग्स है। आई एम श्योर अगर आपने दोस्ती पर की ये मूवीज देखी होगी तो आपको फट से पता चल जाएगा कि कौन सी मूवीज है और कौन सी मूवीज के डायलॉग्स ये है। तो हमारा जो नंबर है वो जल्दी से जल्दी स्पीड डायल पे रख दीजिए। एक फन सेगमेंट करेंगे, बहुत ही एंटरटेनिंग रहेगा, आई एम श्योर आप सभी को भी पसंद आएगा। और जैसे ही आप मुझे फिल्मों के नाम बताते हैं उसी फिल्म का गाना आप सभी को सुनवाऊंगी। तो है ना इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट, तो चलिए उसी की शुरुआत करते हुए आपको पहला डायलॉग सुनवाती हूँ। हमारा जो नंबर है स्पीड डायल पे रख दीजिए जल्दी से जल्दी, 9722355555। और इसी के साथ ये रहा आपका पहला डायलॉग।
1: डूड, तेरे बारे में कुछ सुना है मैंने।
2: क्या?
1: मुझे पता है क्या?
2: मॉम ने बताया।
1: बल ये नहीं बोला होगा कि आई वॉज फॉस्ट।
2: ओके
1: गॉड मैन, उसे कोई बात अंदर रखी नहीं जाती। She's driving me crazy, man. अब 10 दिन पहले लंदन आकर मुझे किसी दोस्त के रिश्तेदार के घर ले गई। लड़की देखी, नीलू आंटी और गोगी अंकल की बेटी कुकी। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि वहां जाऊंगा, चाय पीऊंगा, थैंक यू अंकल थैंक यू आंटी के बाद नो बोल के आ जाऊंगा। जैसे ही चाय की पहले सिप ली, कुकी ने नो बोल दी। सो यू नो आई मीन सो हॉट है, व्हाट इज इट यू नो।
0: अमेजिंग अमेजिंग दोस्तों, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। हमें कोई कॉल कर रहा है, लेते हैं उनको ऑन एयर। गुड इवनिंग फनीशिया रेडियो, यू लाइव ऑन एयर, हु इज दिस? हेलो, कौन बात कर रहा है?
3: राजीव।
0: राजीव बताइए कौन से मूवी का डायलॉग था? All right, thank you. Good evening, Phanisha Radio. You're live on air. Who's this?
4: Yeah, hi. This is Ashish here.
0: Ashish, बताइए कौन से movie का dialogue था?
4: ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: Amazing, perfect. Thank you so much, Ashish, for your call. Good evening, Phanisha Radio. You're live on air. Who's this?
4: Yeah, this is Mr. Nikhil Patel here.
0: Nikhil Patel जी, बताइए कौन से movie का dialogue था?
4: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का डायलॉग था।
0: ऑलराइट, अमेजिंग, थैंक यू सो मच निखिल, बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का डायलॉग था जब ऋतिक रोशन, अभय देओल और फरहान अख्तर वो बार में बैठे हुए होते हैं और कुकी का डायलॉग चलते रहता है कि भाई जैसे ही ऋतिक रोशन ने चाय की पहली सिप ली, कुक ने ना बोल दिया। तो इतना अमेजिंग और इतना फन डायलॉग था ये। अगर आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी होगी तो आई एम श्योर आप सभी को ये डायलॉग पता होगा और पहचान में आ भी गया होगा। तो चलिए अभी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का जिक्र हुआ है तो उसमें का गाना भी सुन लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डायलॉग आप सभी को सुनवाऊंगी। एंजॉय दिस ट्रैक।

0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से सुने थे दोस्तों आप ये गाना पेंट इट रेड। बहुत ही अमेजिंग सी मूवी थी, नहीं देखी है अगर आपने अभी तक तो प्लीज आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल टू वॉच इट। फ्रेंडशिप डे का हमारा सेगमेंट चल रहा है और वहाँ पे मैं आप सभी को कुछ कुछ अच्छी फ्रेंडशिप्स पे जो मूवी बनी है बॉलीवुड में उसके ये डायलॉग्स सुनवा रही हूँ और उसके बेसिस पे आपको मूवीज के नाम पहचाने हैं और उसके बाद मैं आपको उसी मूवी का गाना सुनवाऊंगी। हमारा जो नंबर है 9722355555 अपने स्पीड डायल पे रख दीजिए और जल्दी से जल्दी मुझे ये अगला वाला जो डायलॉग मैं आपको सुनवाने वाली हूँ वो कौन से मूवी का है वो बताइए। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। ये रहा अगला डायलॉग।
1: जानते हो हम तीनों उस जहाज की तरह हैं जो आज नहीं तो कल अपनी मंजिलों को ढूंढते हुए निकलेंगे और हो सकता है कि हमारी मंजिलें अलग अलग हो।
2: तो ये सब क्यों कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम सब दोस्त हैं सिर्फ जिंदगी भर के लिए।
1: ऑफ कोर्स हैं, लेकिन किसकी जिंदगी किसे कहां ले जाती है क्या पता। कभी सोचा है कि शायद हर साल यहां आना तो एक तरफ, 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो। ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हम दोस्त थे हैं रहेंगे।
0: ऑलराइट, हमें कोई कॉल कर रहा है। गुड इवनिंग फनीशिया रेडियो, यू लाइव ऑन एयर, हु इज दिस?
3: अशोक जी है, मूवी का नाम दिल चाहता है।
0: ऑसम ऑसम, आपने देखी है अशोक जी ये मूवी?
3: बहुत बार।
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच अशोक फॉर कॉलिंग, थैंक यू। ऑलराइट दोस्तों, ये मूवी का नाम था, अगर आपको फिर से किसी को कॉल करना है बताइए मुझे। गुड इवनिंग फनीशिया रेडियो, रेडियो
4: मूवी का नाम दिल चाहता है।
0: मूवी का नाम दिल चाहता है और आपका नाम क्या है सर?
4: हामिद।
0: हामिद जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। गुड इवनिंग फनीशिया रेडियो, यू लाइव ऑन एयर, हु इज दिस?
5: जी मैं यास्मीन बोल रही हूँ। ऑल इज वेल।
0: ऑल इज वेल, यास्मीन जी बताइए कौन सी मूवी का नाम है?
5: ऑल इज वेल।
0: ऑल इज वेल, ओ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।

0: ये आमिर खान और फरहान
1: जी
0: अख्तर, नहीं वो आई डोंट नो क्यों मैं भूल गई, ये रोज देखती हूँ
1: नो
0: मूवी, वो
1: प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम.
0: थ्री इडियट, थ्री इडियट, थ्री इडियट.
1: नहीं यास्मीन जी, मूवी का नाम है दिल चाहता है. नो वरीज, थैंक यू सो
0: ओके
1: मच फॉर कॉलिंग. वेल थैंक यू सो मच दोस्तों. जी हाँ, मूवी का नाम था दिल चाहता है. बहुत ही अमेजिंग सी मूवी थी. अगेन पिक्चराइज ऑन आमिर खान, अक्षय खन्ना एंड सैफ अली खान पर. अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज गिव इट अ वॉच. एंड विद दैट लेट्स हियर इट फ्रॉम दिल चाहता है.

0: ब्यूटीफुल गाना दोस्तों सुने थे आप, टेकन फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है। फ्रेंडशिप डे पे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, और ऐसी मूवीज के गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ जो दोस्ती पे बनी है, फ्रेंडशिप्स पे बनी है, और ब्यूटीफुल लगा मूवीज है हमारे बॉलीवुड में। तो चलिए अभी नेक्स्ट डायलॉग की बारी है। ओ माई गॉड, ये मूवी, ये वाला डायलॉग और इस मूवी का ये वाला गाना मेरा सबसे फेवरेट है। हमारा नंबर स्पीड डायल पे रख दीजिए, 9722355555 है स्टूडियो का। जैसे ही आपको डायलॉग सुनने के बाद मूवी कौन सी है ये पता चलता है, मुझे फट से कॉल कीजिएगा। और ये रहा डायलॉग आप सबके लिए।
1: क्या ये सच्ची? क्या मैं झूठा? बात सिर्फ इतनी सी, 82 या तो ये या मैं।

0: मैं डायलॉग फिर से एक बार सुनवाती हूँ दोस्तों।
1: बात सिर्फ इतनी सी है टीटू, या तो ये या मैं।
0: स्टूडियो का नंबर 9722355555।

0: गुड इवनिंग फनीशर रेडियो, यू लेवन एयर, हु इज दिस?
1: तनु की, तनु,
0: सॉरी, आपका नाम?
1: तनु।
0: तनु, बताइए कौन सी मूवी का डायलॉग है?
1: सोनू की स्वीटी, तनु नहीं, सोनू की स्वीटी की,
0: सोनू के टीटू की स्वीटी। जी हाँ, तनु जी, बिल्कुल सही जवाब, थैंक यू। गुड इवनिंग फनीशर रेडियो, यू लेवन एयर, हु इज दिस?
2: Hi, I'm Divya.
0: Divya, बताइए कौन सी मूवी थी?
2: सोनू के टीटू की स्वीटी।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब,
2: कार्तिक आर्यन।
0: अमेजिंग, आपने देखी है मूवी?
2: I did not like the movie though. I mean, it was okay, worth watching, but yeah, somehow it just stayed in the movie, like memory. I don't know why.
0: Yes, yes, nice. Thank you so much for your call. Good evening, Funisher Radio, you're live on air. Who's this?
3: Hi, this is Rahim.
0: बताइए कौन सी मूवी का डायलॉग था?
4: Thank you so much for your call.
0: Hello, hi sir. बताइए कौन सी मूवी का डायलॉग था?
3: Oh, this is from the Sonu ke Titu ki Sweety.
0: Sonu ke Titu ki Sweety. बिल्कुल सही जवाब. Thank you so much. Good evening, Funisher Radio. You're live on air. Who's this?
5: This is Altaf Muhammad.
0: बताइए सर कौन सी मूवी का डायलॉग था?
5: सोनू की टीटू की स्वीटी।
0: ऑल राइट, थैंक यू सो मच। विद दैट वी गॉट आवर लास्ट कॉलर, एंड जी हाँ, इट वॉज फ्रॉम सोनू की टीटू की स्वीटी। एंड इस मूवी से जो ये वाला गाना बनाया गया है और अरिजीत सिंह ने जो ये गाया है, इस गाने को तो फ्रेंडशिप एंथम कहा गया था उस साल में। तो चलिए भाई, फ्रेंडशिप एंथम ही सुन लेते हैं और उसके बाद छोटा सा ब्रेक आने वाला है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। दिस इज योर होस्ट अपूर्वा।